0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्होंने किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक सहायता, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनागाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को बढ़ावा देते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से शामिल किया गया है।
1: शंघाई सहयोग संगठन के बिश्केक घोषणा पत्र में संवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को दोहराया गया है। एससीओ सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों का भी आह्वान किया है, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही भी शामिल है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि विचार विमर्श से शासन और सेवा वितरण के मापने योग्य सुधार हो सकें। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देश भर में नीट पेपर लीक मुद्दे पर छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकियों को रद्द करने और इन मामलों में आगे जांच नहीं करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने कल केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम की ओर से दायर याचिकाओं में बताई गई प्राथमिकियां भी रद्द कर दी और राज्यों को कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को कहा। हालांकि न्यायालय ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल संगीन आपराधिक मामले वाले 2873 लोगों के खिलाफ जांच जारी रखने की अनुमति दी है। सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी CJP के शनिवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को रद्द करने की घोषणा का स्वागत किया है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता युवाओं की प्रगति और विकास है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की समीक्षा की। कल नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में चिन्हित 100 जिलों में योजना में तेजी लाने, योजनाओं के बीच समन्वय को मजबूत करने और किसानों के लिए जिला स्तरीय प्रदर्शन में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया। सरकार ने चीनी व्यापारियों के लिए भंडार रखने की सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नियम 15 सितंबर से अगले महीने 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगा। नई भंडारण सीमा का उद्देश्य जमाखोरी पर अंकुश लगाना, चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना और कीमतों में स्थिरता लाना है। नई समय सीमा के अंतर्गत कोई भी व्यापारी चीनी के भंडार को प्राप्ति की तारीख से 30 दिन से अधिक समय तक नहीं रख सकता और देश भर में किसी भी समय और किसी भी स्थान पर 2000 क्विंटल से अधिक चीनी का भंडार नहीं रख सकता। सरकार ने प्याज के मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए कांदा एक्सप्रेस और सड़क परिवहन के माध्यम से बफर स्टॉक की सुनियोजित और लक्षित आपूर्ति शुरू कर दी है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 30 से अधिक ट्रकों की व्यवस्था के साथ 19 शहरों में खुदरा हस्तक्षेप प्रयासों का विस्तार किया जा रहा है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और आपसी हित के सभी क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी ये यात्रा भारत बेल्जियम के बीच आपसी साझेदारी को सुदृढ़ करने का महत्वपूर्ण अवसर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

7:10 स्टूडियो की घड़ी में वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं आप, जिसका नाम है सुहानी सुबह। मैं शुचिश्मिता आप सबके साथ। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं कि पूरे दिन मौसम का हाल कैसा रहेगा, साथ ही रुक करते हैं अखबार की सुर्खियों की ओर और जान लेते हैं कि आज के दिन इतिहास के पन्नों में क्या था घटा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन तो मैं आप तक बिल्कुल पहुंचाऊंगी, लेकिन इससे पहले बैक टू बैक दो गीत और

0: बादल तो दीवाना हो ही चुका है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में अगर बात करें बारिश की तो 129.8 मिलीमीटर बारिश हुई है। रुक करते हैं अब जो है आज के मौसम की ओर। तो आसमान में जो है आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है, गरज के साथ बौछार पड़ने की भी पूरी संभावना है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगी अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान रहेगी 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास। पिछले 24 घंटे के अगर हम तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान जो है 28.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस के आसपास रही। आर्द्रता की बात करें तो मतलब 100% आर्द्रता रही और अधिकतम और न्यूनतम आर्द्रता जो है 95% के आसपास रही। बारिश तो मैंने आपको बता दिया कि 129.8 मिलीमीटर के आसपास बारिश हुई और पश्चिम बंगाल के मछुआरों के लिए भी एक मौसम चेतावनी आज के दिन के लिए तो बिल्कुल है। चेतावनी कुछ यूँ है कि अगले 6 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल, उत्तरी उड़ीसा और बांग्लादेश के तटों पर जो है 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। कभी कभी ये हवाएं जो है 55 किलोमीटर प्रति घंटे की वेग में भी चल सकती है और मछुआरों को सलाह दी जाती है कि अगले 6 घंटे के दौरान जो है पश्चिम बंगाल, उत्तरी उड़ीसा और बांग्लादेश के तटों पर ना जाएं, समुद्र में ज्यादा दूर तक ना जाएं। जानकारी तो मैंने आपको दे दी। 7:24 स्टूडियो की घड़ी में वक्त और रुक करते हैं अगले गीत की ओर।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress. Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.

करेंगे अखबार की सुर्खियों की ओर। सात बजकर 7:35 स्टूडियो की घड़ी में वक्त, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिसका नाम है सुहानी सुबह। मैं सुचिश्मिता आप सबके साथ, और सुबह सुबह अखबार की सुर्खियाँ बेहद दिलचस्प। और सबसे पहले जो न्यूज आप तक पहुँचाऊंगी वो ये कि सवाल उठाइए पर राष्ट्रहित को ना भूलिए, ऐसा कहा सीएम ने। जी हाँ दोस्तों, सीएम शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार को मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताते हुए उनकी भूमिका की सराहना की और साथ में मीडिया से नेशन फर्स्ट की नीति को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि पत्रकार राज्य सरकार उनकी पार्टी और की आलोचना बिल्कुल कर सकते हैं, करने के लिए उनकी पूरी स्वतंत्रता है। सरकार की नीतियों और कामकाज पर सवाल उठाना मीडिया का अधिकार है, लेकिन देश और राष्ट्रहित से जुड़े मुद्दों पर रिपोर्टिंग करते समय जो है जिम्मेदारी और संवेदनशीलता का परिचय देना चाहिए। राज्य सचिवालय नवानिक में पत्रकारों के लिए पेंशन योजना में बढ़ोतरी और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्रता संविधान ने दी है, बिल्कुल दी है, लेकिन इसका इस्तेमाल करते समय राष्ट्र और धार्मिक भावनाओं का जो है सम्मान करना जरूरी है। देश प्रेम सबसे पहले है, ऐसी किसी भाषा या शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए जिसमें देश कमजोर हो या किसी की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचे। दूसरी बहुत बड़ी बात की है हमारे सीएम ने वो ये कि डेंगू के आंकड़े नहीं छिपाने का सीएम ने दिया है निर्देश। राज्य में कई हिस्सों में डेंगू संक्रमण के मामले सामने आने के बीच मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार को स्वास्थ्य भवन में स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए अहम बैठक की। उन्होंने डेंगू के मामले की जानकारी नहीं छिपाने और नवम्बर तक लगातार निगरानी जारी रखने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि फिलहाल राज्य में 148 लोग डेंगू से संक्रमित हैं। अब तक करीब 4000 मामलों की जानकारी सामने आई है जो पिछले वर्ष

की तुलना में लगभग 50% कम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बुखार होने की पर लोगों को जो है सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में मुफ्त डेंगू की जांच वो करा सकेंगे। इसके अलावा उन्होंने डॉक्टरों से भी डेंगू की पुष्टि होने पर बिना किसी दबाव के इसकी जानकारी दर्ज कराने के लिए कहा है। स्वास्थ्य भवन सूत्रों के अनुसार डेंगू का प्रकोप आमतौर पर पूजा के आसपास जो है बना रहता है। इसे देखते हुए नवम्बर तक विशेष निगरानी और रोकथाम अभियान जारी रखने का निर्देश दिया गया है।

और एक और खबर जो आप तक मैं पहुंचाना चाहूंगी वो ये कि भंडारण सीमा आधी की गई है। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने चीनी की जमाखोरी और सट्टेबाजी पर रोक लगाते हुए जो है कारोबारियों की भंडारण सीमा 4000 से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। नई सीमा 15 सितंबर से 30 सितंबर तक लागू रहेगी। कारोबारियों को चीनी पर्याप्त होने के 30 दिन के भीतर ही इसका निपटाना करना होगा। अखबार की कुछ खास सुर्खियां और रुक करते हैं अब अगले गीत की ओर। सुन रहे हैं कार्यक्रम जिसका नाम है सुहानी सुबह, मैं श्रुति श्मिता आप सबके साथ।

गौर करेंगे कि आज का दिन क्यों है इतिहास के पन्नों की ओर, इस बारे में जानेंगे। तो 1969 बैंकिंग की दुनिया में एटीएम मशीन आज के दिन पहली बार आई थी। 1806 भूस्खलन के कारण स्विट्जरलैंड का एक पूरा शहर बर्बाद हो गया। 1945 जापान के विदेश मंत्री मामोरू शिगेमित्सु ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। वियतनाम ने अपनी

स्वतंत्रता घोषणा की। 1970 नासा ने चांद पर जाने के लिए अपने दो अपोलो मिशन को कैंसिल कर दिया। 1992 निकार गुआ में भूकंप के करीब 116 लोगों की मौत हो गई। ये तो थे इतिहास के पन्नों से कुछ खास पन्ने जो आज के दिन घटित हुए हैं।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहानी सुबह, मैं शुचिश्मिता आप सबके साथ 100.1 FM गोल्ड खड़ा सुना। कार्यक्रम का आखिरी गीत आप सबके लिए छोड़े जाऊंगी, सुनते रहिए, साथ रहिए इस वादे के साथ कि ठीक 11:10 पर एक बार फिर हाजिर रहूंगी लेकर कार्यक्रम लोहा की उनकी याद। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, सुनते रहिए, साथ रहिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत ताज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और सोने की अनावश्यक खरीद तथा विदेश में विवाह आयोजन से बचने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सरकार ने चीनी के भंडारण सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल की। अमेरिका ने ईरान के अंदर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के ठिकानों पर फिर हमले किए। बंदर अब्बास और होर्मोज में धमाकों की आवाज सुनी गई। भारतीय फॉरेंसिक टीम ने नेपाल में बाढ़ के पीड़ितों के पहचान के लिए डीएनए जांच शुरू की। और बैडमिंटन में भारत के लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा आज शेंजेन में चाइना मास्टर्स सुपर 750 में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने, सोने की अनावश्यक खरीद और विदेशों में शादी ब्याह करने से बचने का आह्वान किया है। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा आज जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं उससे उनके सपने साकार होंगे।
1: स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए। शादी ब्याह विदेशों में करते हैं, नहीं करना चाहिए। मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे, जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे, मुझे पक्का विश्वास है जब आजादी के 100 साल होंगे, हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुप्रत करेंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता, युद्धों, संकटों और आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाधाओं के बावजूद भारत तीव्र गति से प्रगति कर रहा है।
1: 7.8% ग्रोथ, देश खुशियों से भर गया है। लेकिन देशवासियों को मैं बधाई देता हूँ उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए। एक सामूहिक शक्ति का एक प्रतिबिंब है। दुनिया युद्ध में डूबी हुई है, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही है, विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है। 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी

0: सीमा नजर नहीं आ रही, उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने तथा स्वदेशी उत्पादों के उपयोग पर अधिक बल देने की आवश्यकता बताई।
0: भारत के भीतर भी निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग, झूठ की गुंज, चारों तरफ निराशा फैलाने में लगे हुए, इन सारी चीजों को पार करते हुए, उन सभी बातों को चीर करके देश ने 7.8% ग्रोथ हासिल किया है। हमें इस गति को बनाए रखना, हमें बढ़ना भी है और इसके लिए आत्मनिर्भर भारत बनना बहुत जरूरी है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि विचार विमर्श से शासन और सेवा वितरण में व्यापक सुधार हो सके। सरकार ने चीनी व्यापारियों के लिए भंडार रखने की सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नियम 15 सितंबर से 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगा। एक रिपोर्ट।
2: संशोधित प्रावधानों के तहत कोई भी चीनी व्यापारी किसी भी भंडार को प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों से अधिक समय तक नहीं रख सकता है। चीनी व्यापारी देश भर में किसी भी समय और किसी भी स्थान पर 2000 क्विंटल से अधिक चीनी का भंडार नहीं रख सकता है। हालांकि कोलकाता और उसके आसपास के महानगरीय क्षेत्रों के विशिष्ट बाजार आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भंडार रखने की सीमा 4000 क्विंटल ही रहेगी। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि कोलकाता उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से चीनी खरीदता है और उत्तर पूर्वी क्षेत्र सहित देश के पूर्वी हिस्से को इसकी आपूर्ति करता है, इसलिए कोलकाता और उसके आसपास के महानगरीय क्षेत्रों के लिए 4000 क्विंटल की मौजूदा सीमा को बरकरार रखा गया है। भानु के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने प्याज के मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए कांदा एक्सप्रेस और सड़क परिवहन के माध्यम से बफर स्टॉक की सुनियोजित और लक्षित आपूर्ति शुरू कर दी है। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 30 से अधिक ट्रकों की व्यवस्था के साथ 19 शहरों में खुदरा हस्तक्षेप प्रयासों का विस्तार किया गया है। एक रिपोर्ट।
3: नासिक से कांदा एक्सप्रेस से 450 मीट्रिक टन प्याज दिल्ली पहुंचा और इसे वाराणसी, लखनऊ, चंडीगढ़, अमृतसर तथा दिल्ली एनसीआर में वितरित किया गया है। 840 मीट्रिक टन प्याज कल चेन्नई पहुंचा और इसे तमिलनाडु के विभिन्न जिलों में वितरित किया जाना है। मंत्रालय ने बताया कि मौजूदा बाजार स्थितियों और मूल्य रुझानों के आधार पर लगभग 1000 मीट्रिक टन प्याज सड़क मार्ग से प्रमुख उपभोग केंद्र तक पहुंचाया जा रहा है। मंत्रालय ने सूचित किया कि लगभग 3400 प्याज उत्पादक किसानों को 210 करोड़ रुपए का सीधा भुगतान किया जा चुका है। मंत्रालय ने बताया कि बफर स्टॉक से प्याज जारी करने से बाजार में उपलब्धता में सुधार हुआ है और बिक्री शुरू होने के अगले दिन से कीमतों में गिरावट आई है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
5: Update rahe, aage rahe. Expert at AIR News Hindi or Instagram par AIR News Alerts ko follow kare.
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका ने ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC को निशाना बनाकर नए सिरे से आक्रमण शुरू कर दिए हैं। ईरानी मीडिया के अनुसार बंदर अब्बास, होर्मोज, असालवे, ज़िरोफ्ट, केशन द्वीप सहित कई इलाकों में धमाकों की आवाज सुनी गई। वहीं अमरीकी सेंट्रल कमान ने कहा है कि उनकी ओर से ईरानी सेना को निशाना बनाकर किए गए हमले पूरे हो चुके हैं। इस दौरान वायु रक्षा क्षेत्रों, बारूदी सुरंगों

0: की क्षमता वाली जगहों और संचार संबंधी केंद्रों सहित कई प्रमुख स्थानों को निशाना बनाया गया। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमरीकी हमले में कोहिस्ताक शहर में एक शादी समारोह के दौरान एक घर को भी निशाना बनाया गया, जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई और 50 से अधिक लोग घायल हो गए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में चेतावनी दी है कि ईरान की ओर से इस हमले के जवाब में किसी भी प्रकार की कार्रवाई का और भी कड़ा जवाब दिया जाएगा। नेपाल में 19 सदस्यीय भारतीय फॉरेंसिक दल ने फॉरेंसिक विशेषज्ञों के साथ मिलकर बाढ़ से प्रभावित लोगों की पहचान में सहायता के लिए डीएनए के नमूनों की जांच शुरू कर दी है। नेपाल में आई बाढ़ में जानमाल का भारी नुकसान हुआ है और बड़ी संख्या में लोग लापता हो गए हैं। नेपाल पुलिस ने बताया कि कल शाम तक 1068 शव बरामद किए गए, जिनमें से 400 शवों के केवल आंशिक अवशेष ही मिले, जिससे पहचान प्रक्रिया जटिल हो गई। बाढ़ के बाद मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है, इसीलिए अधिकारियों ने पहचान के प्रयासों में सहायता के लिए कई लावारिस शवों से डीएनए नमूने एकत्र किए हैं। चितवन जिले में अब तक सबसे अधिक शव बरामद हुए हैं। पहचान के लिए डीएनए नमूने एकत्र करने के बाद अधिकारियों ने नदी किनारों पर खुले स्थानों में सैकड़ों शवों को दफना दिया है। नेपाल में आई त्रासदी के बाद बिहार के सीमावर्ती जिलों में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि भागलपुर में नदी का जलस्तर बढ़ने और कटाव के कारण स्थिति गंभीर बनी हुई है।
1: गंगा के तेज कटाव के चलते नवगछिया प्रखंड में वर्षों पुराने दुर्गा मंदिर, हनुमान मंदिर और करीब 500 मीटर लंबा जमींदारी बांध गंगा में समा गया है। प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि गंगा की धारा में अप्रत्याशित बदलाव से कटाव गंभीर हो रहा है।
2: भागलपुर में खरीक ब्लॉक का शंकरपुर गाँव है, वहाँ पे गंगा की धारा कुछ बदलने की प्रवृत्ति हो रही है। यह बात सही है कि स्थिति वहाँ पर जो है उससे थोड़ा खतरा बना हुआ है, लेकिन हमारे सभी वरीय पदाधिकारी गए हुए हैं।
1: इधर सारण, वैशाली, बेगूसराय, बक्सर, जहानाबाद, नवादा और औरंगाबाद में प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से कई स्थानों पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: वहीं छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में तेज बारिश का अनुमान लगाया है। विभाग के अनुसार आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, कर्नाटक और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में छिटपुट बारिश की संभावना है, जबकि कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में तेज बारिश हो सकती है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के तीसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। इस दीक्षांत समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर, सुपर स्पेशलिटी डॉक्टरेट और स्वास्थ्य विज्ञान कार्यक्रमों से उत्तीर्ण छात्रों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और आपसी हितों के सभी क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत और अमेरिका महत्वपूर्ण खनिजों के विषय में और अधिक मिलकर काम करने के लिए सहमत हो गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के बीच हुई बैठक के बाद इस पर सहमति बनी। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। भारत के शटलर लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा आज ग्वांगडोंग प्रांत के शेंजेन में आयोजित चाइना मास्टर सुपर 750 बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत करेंगे। शीर्ष वरीयता प्राप्त सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी भी पुरुष युगल में खेलते नजर आएंगे। इससे पहले भारत की उन्नति हुड्डा कल टूर्नामेंट से बाहर हो गयी। हुड्डा महिला एकल के पहले दौर में दक्षिण कोरिया के विश्व नंबर 12 किम गांग यून से सीधे गेम में 10-21, 18-21 से हार गयी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अफगानिस्तान के साथ 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। कप्तान श्रेयस अय्यर होंगे, उप कप्तान तिलक वर्मा को बनाया गया है। 15-वर्षीय वैभव सूर्यवंशी भी टीम का हिस्सा है। 13 सितंबर को पहला मैच खेला जाएगा, दूसरा मैच 15 सितंबर को, सीरीज का अंतिम मैच 17 सितंबर को खेला जाएगा। तीनों मैच नई दिल्ली में खेले जाएंगे।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद फरहत।

0: वैश्विक चुनौतियों के बीच विकास की गति जारी रखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने दिया स्वदेशी का मंत्र। एक बार फिर से सोना खरीदारी और विदेश भ्रमण से दूर रहने को कहा। दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों की सुर्खी है। नदियों का जलस्तर बढ़ने के बीच नेपाल में बाढ़ की चेतावनी, जनसत्ता की खबर है। अमर उजाला ने वहां की तस्वीरें प्रकाशित करते हुए लिखा है, नेपाल में जल प्रलय। पत्र ने दक्षिण पश्चिम मानसून के सक्रिय होने का समाचार भी दिया है। मौसम का कहर, उत्तराखंड में 11 की मौत, 19 राज्यों में भारी बारिश के आसार। छत पर मुफ्त सोलर पैनल लगाएगी सरकार, औसत बिजली खपत 400 यूनिट होने पर मिलेगा फायदा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, दिल्ली में घर बैठे ही मोबाइल से संपत्ति की रजिस्ट्री करा सकेंगे। हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, रजिस्ट्री होते हुए दस्तावेज खरीदार के डिजी लॉकर पहुंच जाएंगे। एआई ने बढ़ा दी वेबसाइटों की मुश्किलें, गूगल सर्च नहीं, यूजर्स सीधे एआई से पूछ रहे हैं सवाल। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। जनसत्ता ने नादिया में जन्माष्टमी के त्यौहार से पहले भगवान कृष्ण की मूर्ति को अंतिम रूप देते हुए कलाकार की मनमोहक तस्वीर प्रकाशित की है। डिब्बा बंद भोजन का आंत का कैंसर भी बढ़ा रहा है। एम्स के अनुसार हर तीसरे व्यक्ति को गैस्ट्रो की परेशानी, खराब खानपान और जीवन शैली वजह है। हिंदुस्तान में है, पेट को स्वस्थ रखने के लिए पानी का अधिक सेवन और फाइबर युक्त भोजन लेने की दी सलाह।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और सोने की अनावश्यक खरीद तथा विदेश में विवाह आयोजन से बचने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सरकार ने चीनी की भंडारण सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल की। अमेरिका ने ईरान के अंदर इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के ठिकानों पर फिर हमले किए। बंदर अब्बास और होर्मोज में धमाकों की आवाज सुनी गई। भारतीय फोरेंसिक टीम ने नेपाल में बाढ़ के पीड़ितों की पहचान के लिए डीएनए जांच शुरू की। और बैडमिंटन में भारत के लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा आज शेंजेन में चाइना मास्टर सुपर 750 में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi renews call to embrace Swadeshi goods and avoid unnecessary purchase of gold and destination weddings abroad. Prime Minister to address valedictory session of departmental summit of Jal Shakti Ministry in New Delhi today. Government reduces stock holding limit of sugar from 4 to 2,000 quintals. US begins fresh strikes on IRGC targets inside Iran. Explosions heard in Bandar Abbas and Hormuz. Indian forensic team begins DNA analysis to identify flash flood victims in Nepal. And India's leading shuttlers Lakshya Sen, Kidambi Srikant and Tanvi Sharma to begin their campaigns at China Master Super 750 in Shenzhen today. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has renewed his call to embrace Swadeshi goods and avoid unnecessary purchase of gold and destination weddings abroad. In a video message, the Prime Minister asked Indians to shun leisure trips abroad, avoid getting married overseas, and refrain from buying gold unless necessary.
3: स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए। शादी ब्याह विदेशों में करते हैं, नहीं करना चाहिए। मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे, जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे, मुझे पक्का विश्वास है जब आजादी के 100 साल होंगे, हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुपुर्द करेंगे।
2: Mr. Modi congratulated the country on recording 7.8% economic growth and spoke of the need to promote self-reliance and give greater emphasis to Swadeshi products. The Prime Minister said India is progressing rapidly despite global uncertainty, wars, crises and disruptions to supply chains.
3: देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। 7.8% ग्रोथ, देश खुशियों से भर गया है। लेकिन देशवासियों को मैं बधाई देता हूँ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्य को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि विचार विमर्श से शासन और सेवा वितरण में मापने योग्य सुधार हो सके। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और आपसी हितों के सभी क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने, सोने की अनावश्यक खरीद और विदेशों में शादी ब्याह करने से बचने का आह्वान किया है। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा आज जो कड़ी मेहनत कर रही हैं, उससे उनके सपने साकार होंगे।
1: स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए। शादी ब्याह विदेशों में करते हैं, नहीं करना चाहिए। मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे, जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे, मुझे पक्का विश्वास है जब आजादी के 100 साल होंगे, हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुप्रत करेंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता, युद्धों, संकटों और आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाधाओं के बावजूद भारत तीव्र गति से प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने तथा स्वदेशी उत्पादों के उपयोग पर अधिक बल देने की आवश्यकता जताई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के तीसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। इस दीक्षांत समारोह में स्नातक, स्नातोत्तर, सुपर स्पेशलिटी डॉक्टरेट और स्वास्थ्य विज्ञान कार्यक्रमों से उत्तीर्ण छात्रों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की समीक्षा की। बैठक में चिन्हित 100 जिलों में योजना में तेजी लाने, योजनाओं के बीच समन्वय को मजबूत करने और किसानों के लिए जिला स्तरीय प्रदर्शन में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया। सरकार ने प्याज के मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए कांदा एक्सप्रेस और सड़क परिवहन के माध्यम से बफर स्टॉक की सुनियोजित और लक्षित आपूर्ति शुरू कर दी है। एक रिपोर्ट।
2: नासिक से कांदा एक्सप्रेस से 450 मीट्रिक टन प्याज दिल्ली पहुंचा और इसे वाराणसी, लखनऊ, चंडीगढ़, अमृतसर तथा दिल्ली NCR में वितरित किया गया है। 840 मीट्रिक टन प्याज कल चेन्नई पहुंचा और इसे तमिलनाडु के विभिन्न जिलों में वितरित किया जाना है। मंत्रालय ने बताया कि मौजूदा बाजार स्थितियों और मूल्य रुझानों के आधार पर लगभग 1000

0: मीट्रिक टन प्याज सड़क मार्ग से प्रमुख उपभोग केंद्र तक पहुंचाया जा रहा है। मंत्रालय ने सूचित किया कि लगभग 3,400 प्याज उत्पादक किसानों को 210 करोड़ रुपए का सीधा भुगतान किया जा चुका है। मंत्रालय ने बताया कि बफर स्टॉक से प्याज जारी करने से बाजार में उपलब्धता में सुधार हुआ है और बिक्री शुरू होने के अगले दिन से कीमतों में गिरावट आई है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: सरकार ने चीनी व्यापारियों के लिए भंडार रखने की सीमा 4,000 क्विंटल से घटाकर 2,000 क्विंटल कर दी है। ये नियम 15 सितंबर से 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगा। नई भंडारण सीमा का उद्देश्य जमाखोरी पर अंकुश लगाना है। नेपाल में आई त्रासदी के बाद बिहार के सीमावर्ती जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि भागलपुर में नदी का जलस्तर बढ़ने और कटाव के कारण स्थिति गंभीर बनी हुई है। वहीं छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में तेज बारिश का अनुमान लगाया है। विभाग के अनुसार आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, कर्नाटक और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में छिटपुट बारिश की संभावना है, जबकि कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में तेज बारिश हो सकती है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अफगानिस्तान के साथ 3 मैचों की T20 श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। कप्तान श्रेयस अय्यर होंगे, उपकप्तान तिलक वर्मा को बनाया गया है। वहीं 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी भी टीम का हिस्सा है। 13 सितंबर को पहला मैच खेला जाएगा। भारत के शटलर लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा आज ग्वांगडोंग प्रांत के शेंजेन में आयोजित चाइना मास्टर सुपर 750 बैडमिंटन चैंपियन की शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणु कटारिया। Prime Minister Narendra Modi has renewed his call to embrace Swadeshi goods and avoid unnecessary purchase of gold and destination weddings abroad. In a video message, the Prime Minister asked Indians to shun leisure trips abroad, avoid getting married overseas and refrain from buying gold unless necessary. Mr. Modi congratulated the country on recording 7.8% economic growth and spoke of the need to promote self-reliance and give greater emphasis to Swadeshi products. The Prime Minister said India is progressing rapidly despite global uncertainty, wars, crises and disruptions to supply chains.
3: देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। 7.8% ग्रोथ, देश खुशियों से भर गया है। लेकिन देशवासियों को मैं बधाई देता हूं उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए। एक सामूहिक शक्ति का एक प्रतिबिंब है। दुनिया युद्ध में डूबी हुई है, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही, विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है। 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही, उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है।
2: Taking a swipe at his critics, he said some people within the country drowned in an atmosphere of despair are spreading the lies all around. The government has reduced the stock holding limit for sugar dealers from 4,000 quintals to 2,000 quintals effective from the 15th of this month till the 30th of November this year. Our correspondent reports that the new stock limit is aimed to curb hoarding and speculative trading, protect consumer interest by ensuring adequate availability and price stability. Vice President C.P. Radhakrishnan will visit Raipur today to attend third convocation of All India Institute of Medical Sciences, AIIMS Raipur. The convocation will mark a significant milestone in the institute's academic journey, with degrees being conferred on graduating students from undergraduate, postgraduate, super speciality, doctoral and allied health sciences programs in the presence of distinguished dignitaries. A 19-member Indian forensic team has begun analyzing DNA samples alongside forensic experts to assist in identifying people affected by the recent flash floods in Nepal. Indian Embassy said that the team commenced the analysis at the Nepal Police Central Forensic Science Laboratory and the National Forensic Science Laboratory in the Humaltar area of Kathmandu Valley. The Indian experts are working with their counterparts to speed up the processing of DNA samples collected from flood-affected areas and help establish the identities of victims and missing persons. The deployment of Indian forensic team is part of ongoing efforts to

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि विचार विमर्श से शासन और सेवा वितरण में मापने योग्य सुधार हो सकें। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने, सोने की अनावश्यक खरीद और विदेशों में शादी ब्याह समारोह आयोजित करने से बचने का आह्वान किया है। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा आज जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं उससे उनके सपने साकार होंगे।
1: स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए। शादी ब्याह विदेशों में करते हैं, नहीं करना चाहिए। मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे, जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे, मुझे पक्का विश्वास है जब आजादी के 100 साल होंगे हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुप्रत करेंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता, युद्धों, संकटों और आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाधाओं के बावजूद देश तीव्र गति से प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने तथा स्वदेशी उत्पादों के उपयोग पर अधिक बल देने की आवश्यकता जतलाई। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और आपसी हितों के सभी क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के 3rd दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर, सुपर स्पेशलिटी, डॉक्टरेट और स्वास्थ्य विज्ञान कार्यक्रमों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएगी। सरकार ने प्याज के मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए कांदा एक्सप्रेस और सड़क परिवहन के माध्यम से बफर स्टॉक की सुनियोजित और लक्षित आपूर्ति शुरू कर दी है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि व्यापक उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 30 से अधिक ट्रकों की तैनाती के साथ 19 शहरों में खुदरा हस्तक्षेप प्रयासों का विस्तार किया गया है। मंत्रालय ने बताया कि नासिक से कांदा एक्सप्रेस से 450 मीट्रिक टन प्याज दिल्ली पहुंच गई है और बाद में इसे वाराणसी, लखनऊ, चंडीगढ़, अमृतसर और दिल्ली NCR क्षेत्र में वितरित किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि 840 मीट्रिक टन प्याज कल चेन्नई पहुंची और इसे तमिलनाडु के विभिन्न जिलों में वितरित किया जाना है। सरकार ने चीनी व्यापारियों के लिए भंडार रखने की सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नियम इस महीने की 15 तारीख से इस वर्ष 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगा। हालांकि कोलकाता और उसके आसपास के महानगरीय क्षेत्रों की विशिष्ट बाजार आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भंडार रखने की सीमा 4000 क्विंटल ही रहेगी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और सोने की अनावश्यक खरीद तथा विदेश में विवाह आयोजन से बचने का आह्वान किया। अमेरिका ने ईरान के अंदर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के ठिकानों पर फिर हमले किए। बंदर अब्बास और हुरमुज में धमाकों की आवाज सुनी गई। भारतीय फोरेंसिक टीम ने नेपाल बाढ़ पीड़ितों की पहचान के लिए डीएनए जांच शुरू की। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर। और भारत और अमेरिका महत्वपूर्ण खनिजों के विषय में और अधिक मिलकर काम करने पर सहमत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने, सोने की अनावश्यक खरीद और विदेशों में विवाह आयोजन करने से बचने का आह्वान किया है। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा आज जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं उससे उनके सपने साकार होंगे।
1: स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए। शादी ब्याह विदेशों में करते हैं, नहीं करना चाहिए। मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे, जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे, मुझे पक्का विश्वास है जब आजादी के 100 साल होंगे, हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुप्रत करेंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता, युद्धों, संकटों और आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाधाओं के बावजूद भारत तीव्र गति से प्रगति कर रहा है।
1: 7.8% ग्रोथ, देश खुशियों से भर गया है। लेकिन देशवासियों को मैं बधाई देता हूँ उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए। एक सामूहिक शक्ति का एक प्रतिबिंब है। दुनिया युद्ध में डूबी हुई है, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही है, विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है। 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही, उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है।
0: श्री मोदी ने अपने संदेश में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने तथा स्वदेशी उत्पादों के उपयोग पर अधिक बल देने की आवश्यकता बताई।
1: भारत के भीतर भी निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग, झूठ की गुंज चारों तरफ निराशा फैलाने में लगे हुए, इन सारी चीजों को पार करते हुए, उन सभी बातों को चीर करके देश ने 7.8% ग्रोथ हासिल किया है। हमें इस गति को बनाए रखना, हमें बढ़ना भी है और इसके लिए आत्मनिर्भर भारत बनना बहुत जरूरी है।
0: अमेरिका ने ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC को निशाना बनाकर नए सिरे से आक्रमण शुरू कर दिए हैं। ईरानी मीडिया के अनुसार बंदर अब्बास, हुरमुज, असालुवेह, ज़िरफ्त, केशम द्वीप और कोनाराक सहित कई इलाकों में धमाकों की आवाज सुनी गई। एक रिपोर्ट।
2: अमरीकी सेंट्रल कमान ने कहा है कि उनकी ओर से ईरानी सेना को निशाना बनाकर किए गए हमले पूरे हो चुके हैं। इस दौरान वायु रक्षा क्षेत्रों, बारूदी सुरंगों की क्षमता वाली

0: हों और संचार संबंधी केंद्रों सहित कई प्रमुख स्थानों को निशाना बनाया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में चेतावनी दी है कि ईरान की ओर से इस हमले के जवाब में किसी भी प्रकार की कार्रवाई का और भी कड़ा जवाब दिया जाएगा। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि ईरान पर इससे भी बड़ा आक्रमण किया जा सकता है। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिकी हमले में कोहिस्ताक शहर में एक शादी समारोह के दौरान एक घर को निशाना बनाया गया, जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई और 50 से अधिक लोग घायल हो गए। वहीं ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने जॉर्डन के कैंप टिटिन में अमेरिकी सेना की बैरकों पर हमलों की जिम्मेदारी ली। ईरान की सेना ने कहा कि उसने बहरीन के शेख ईसा हवाई अड्डे पर तैनात अमेरिकी सैन्य बलों को निशाना बनाया। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि G20 वित्त मंत्रियों की बैठक के दौरान अमेरिका ने ईरान के मुद्दों पर चीन और रूस के साथ गुप्त रूप से चर्चा की। हालांकि उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि चीन ने होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने में मदद करने के लिए कोई विशिष्ट प्रतिबद्धता नहीं जताई है। बेसेंट ने कहा है कि ट्रंप प्रशासन ईरान के खिलाफ अपने आर्थिक अभियान के लिए व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहा है। बेसेंट ने कहा कि चीन इस बात से सहमत है कि ईरान परमाणु हथियार नहीं रख सकता। चीन इस बात से भी सहमत है कि होर्मुज जल डमरू मध्य में निर्बाध समुद्री व्यापार होना चाहिए। नेपाल में 19 सदस्यीय भारतीय फोरेंसिक दल ने फोरेंसिक विशेषज्ञों के साथ मिलकर हाल ही में आई बाढ़ से प्रभावित लोगों की पहचान में सहायता के लिए डीएनए के नमूनों का विश्लेषण शुरू कर दिया है।
2: बाढ़ के बाद नेपाल को सहायता प्रदान करने के लिए जारी प्रयासों के रूप में भारतीय फोरेंसिक दल को वहां तैनात किया गया है। नेपाल बाढ़ में जानमाल का व्यापक नुकसान हुआ है और बड़ी संख्या में लोग लापता हैं। नेपाल पुलिस ने बताया कि अब तक 1068 शव बरामद किए गए हैं, जिनमें से 400 के केवल आंशिक अवशेष ही प्राप्त हुए हैं। बाढ़ के बाद मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है, इसीलिए अधिकारियों ने पहचान के लिए कई लावारिश शवों से डीएनए नमूने एकत्र किए हैं। चितवन जिले में अब तक सबसे अधिक शव बरामद हुए हैं। डीएनए नमूने एकत्र करने के बाद अधिकारियों ने सैकड़ों शवों को दफना दिया है। नेपाल पुलिस के अनुसार 583 विदेशी नागरिकों सहित 4600 लोग अभी भी लापता हैं, जिससे मृतकों की संख्या में और वृद्धि होने की आशंका है। रसुआ और नुवाकोट जिलों में भोटेकोशी और त्रिशूली नदी गलियारों के किनारे स्थित विभिन्न पनबिजली परियोजनाओं में लापता लोगों का पता लगाने के लिए प्रयास जारी हैं। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: नेपाल में जारी बचाव और राहत कार्यों में भारत हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। आज नेपाल के लिए राहत और बचाव सामग्री लेकर 5वां भारतीय विमान रवाना हो गया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पर बताया कि विमान में 11 सदस्यीय बचाव दल और 5 टन से अधिक आवश्यक सामग्री है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों और आपसी हितों के सभी क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। वे मुंबई में हीरा बंदरगाह और लॉजिस्टिक्स से जुड़े क्षेत्रों के विभिन्न हितधारकों के साथ बातचीत करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उनकी ये यात्रा भारत बेल्जियम के बीच आपसी साझेदारी को सुदृढ़ करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। इस दौरान व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, संपर्क तथा लोगों के बीच संबंधों सहित आपसी हितों के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग आगे बढ़ेगा। भारत और अमेरिका महत्वपूर्ण खनिजों के विषय में और अधिक मिलकर काम करने के लिए सहमत हो गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के बीच हुई बैठक के बाद इस पर सहमति बनी। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। कल उत्तरी कैरोलिना के एशविले में G20 के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक के दौरान दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। इस बैठक में महत्वपूर्ण खनिजों और सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा भारत अमेरिका आर्थिक वार्ता के केंद्र रही। इस अवसर पर वित्त मंत्री सीतारामन ने श्री बेसेंट को इस वर्ष के अंत में भारत अमेरिका आर्थिक और वित्तीय साझेदारी संबंधी बैठक के लिए भारत आने का निमंत्रण भी दिया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरस इस महीने नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत इस वर्ष ब्रिक्स के अध्यक्ष के रूप में 12-13 सितंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में संगठन के 18वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण है। भारत के शटलर लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा आज चीन के ग्वांगडोंग प्रांत के शेनजेन में आयोजित चाइना मास्टर्स सुपर 750

बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत करेंगे। शीर्ष वरीयता प्राप्त सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी भी पुरुष डबल्स में खेलते नजर आएंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अफगानिस्तान के साथ 3 मैचों की T20 श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। पहला मैच 13 सितंबर को होगा, वहीं ये नई दिल्ली में मैच खेले जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और सोने की अनावश्यक खरीद तथा विदेश में विवाह आयोजन से बचने का आह्वान किया। अमेरिका ने ईरान के अंदर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के ठिकानों पर फिर हमले किए। बंदर अब्बास और होर्मुज में धमाकों की आवाज सुनी गई। भारतीय फॉरेंसिक टीम ने नेपाल बाढ़ पीड़ितों की पहचान के लिए DNA जांच शुरू की। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर। और भारत और अमेरिका महत्वपूर्ण खनिजों के विषय में और अधिक मिलकर काम करने पर सहमत। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि विचार विमर्श से शासन और सेवा वितरण में सुधार हो सके। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने, सोने की अनावश्यक खरीद और विदेशों में शादी ब्याह समारोह आयोजित करने से बचने का आह्वान किया है। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा आज जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं उससे उनके सपने साकार होंगे।
1: स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए। शादी ब्याह विदेशों में करते हैं, नहीं करना चाहिए। मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे, जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे, मुझे पक्का विश्वास है जब आजादी के 100 साल होंगे, हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुप्रत करेंगे।
0: प्रवर्तन निदेशालय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के टोल प्लाजा पर कथित धोखाधड़ी के मामले में 14 परिसरों में छापेमारी कर रहा है। ये तलाशी धन शोधन निवारण अधिनियम

नियम PMLA के तहत की जा रही है। ये परिसर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, जम्मू, मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR और कोलकाता में स्थित हैं। सरकार ने प्याज की कीमतों में मौसमी बढ़ोतरी को रोकने के लिए बफर स्टॉक से प्याज की आपूर्ति शुरू कर दी है। इसके लिए कांदा एक्सप्रेस और सड़क परिवहन का इस्तेमाल किया जा रहा है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया है कि 19 शहरों में खुदरा बिक्री के लिए 30 से अधिक ट्रकों को लगाया गया है। मंत्रालय के अनुसार नाशिक से कांदा एक्सप्रेस से 450 मीट्रिक टन प्याज दिल्ली पहुंच गया है। इसे दिल्ली NCR क्षेत्र के अलावा वाराणसी, चंडीगढ़ और अमृतसर भेजा गया है। मंत्रालय ने बताया है कि 840 मीट्रिक टन प्याज चेन्नई पहुंच चुका है। इसे तमिलनाडु के विभिन्न जिलों में वितरित किया जाएगा। उधर सरकार ने चीनी व्यापारियों के लिए भंडार रखने की सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नियम इस महीने की 15 तारीख से इस वर्ष 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगा। हालांकि कोलकाता और उसके आसपास के महानगरीय क्षेत्रों की विशिष्ट बाजार आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भंडार रखने की सीमा 4000 क्विंटल ही रहेगी। नेपाल में जारी बचाव और राहत कार्यों में भारत हर संभव मदद कर रहा है। आज नेपाल के लिए राहत और बचाव सामग्री लेकर 5वां भारतीय विमान रवाना हो गया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि विमान में 11 सदस्यीय बचाव दल और 5 टन से अधिक जरूरी दवाएं भेजी गई हैं। इस बीच नेपाल में आई त्रासदी के बाद बिहार के सीमावर्ती जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। भागलपुर में नदी का जलस्तर बढ़ने और कटाव के कारण स्थिति गंभीर बनी हुई है। उधर नेपाल में बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 1000 से अधिक हो गई है। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान जारी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी आज तेज बारिश का अनुमान है। बैडमिंटन में भारत के किदांबी श्रीकांत आज चीन ओपन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने पुरुष सिंगल्स के शुरुआती मैच में चीनी ताइपे के ची यूजेन को हराया। पुरुष सिंगल्स के अन्य मुकाबले में लक्ष्य सेन कनाडा के विक्टर लाई से 14-21-7-21 से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। भारत की मिक्स डबल्स जोड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो ने भी थाईलैंड के तोनाकोन साइहेंग और तोनिचा साइहेंग को हराकर अगले दौर में जगह बनाई। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अफगानिस्तान के साथ 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। 13 सितंबर को पहला मैच खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: हुए पल लेके आए हैं यादों की बारात। आप सुन रहे हैं लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर। लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर।
1: बज के 11 मिनट स्टूडियो के घड़ी में वक्त, मैं सुचिश्मिता आप सबके साथ कार्यक्रम लेकर आ गई हूँ जिसका नाम है लो आ गई उनकी याद। और आज के इस कार्यक्रम में हम याद करेंगे आनंद राज आनंद को और सुनेंगे उनके गीत और खुद भी आनंदित हो जाएंगे। और कार्यक्रम का पहला गीत बिल्कुल तैयार, आप सबके लिए इंतजार कर रहा है, बस देरी है तो मुझे क्लिक करने की। चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

ना कुछ धुन जो है सीधे दिल तक पहुंचते हैं कानों की ओर से, और कुछ संगीतकार ऐसे ही होते हैं जिनकी बनाई धुने सुनते ही बस फिल्मों के दृश्य, कई बार किरदार और उससे जुड़ी सारी कहानियां आंखों के सामने तैरने लगती हैं। आज के हमारे कार्यक्रम लो आ गई उनकी याद में हम बात कर रहे हैं ऐसे ही संगीतकार की, जिनकी धुनों में कभी मस्ती, कभी जोश, कभी रोमांस और कभी दिल को छू लेने वाली मिठास होती है। जी हाँ, बात हो रही है आनंद राज आनंद की। आनंद राज आनंद ने हिंदी फिल्म के संगीत में अपनी अलग पहचान बनाई। संगीतकार के साथ साथ उन्होंने गीतकार और गायक के रूप में भी अपनी प्रतिभा दिखाई। उनकी रचनाओं में लोक धुनों की सहजता है, लोकप्रियता है, संगीत है, ऊर्जा है, श्रोताओं से तुरंत जुड़ जाने वाली सरलता दिखाई देती है। और उनके संगीत की खासियत रही है कि ऐसे धुन जिन्हें सुनते ही कदम थिरकने लगते हैं, जिन्हें गुनगुनाने में किसी तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती। तो चलिए सुनते हैं अगला गीत।

बीते हुए पल लेके आई है यादों की बारात। आप सुन रहे हैं लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर। लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर।

सुना बैक टू बैक दो गीत और बेहद खूबसूरत गीत सुन रहे हैं आप आनंद राज आनंद की, क्योंकि बातें हो रही हैं उनकी। उनके संगीत की खासियत थी कि वह ऐसे धुन बनाते थे जिन्हें सुनते ही कदम थिरकने लगते थे। संगीत की यही तो खूब

खूबसूरती होती है। कुछ गीत समय के साथ पुराने नहीं बल्कि हमारी यादों के साथ और गहरे जुड़ते जाते हैं। आनंद राज आनंद की संगीत करियर केवल रोमांटिक ही तो तक सीमित नहीं रहा, उन्होंने एक्शन कॉमेडी और मसाला फिल्मों के लिए भी बेहद ऊर्जावान संगीत दिए।

हुए पल लेके आए हैं यादों की बारात। आप सुन रहे हैं लो आ गए उनकी याद, लो आ गए उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर। लो आ गए उनकी याद, लो आ गए उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर।

11:53 स्टूडियो की घड़ी में वक्त और स्टूडियो की घड़ी बता रही है कि मुझे कहना होगा अब आप सबको टाटा एंड बाय बाय, लेकिन जाते जाते छोड़ जाऊंगी आपको एक और प्यारे गीत के साथ आनंद राज आनंद की ही आवाज़ में और इस वादे के साथ कि ऐसे ही किसी कार्यक्रम में दोबारा मिलूंगे हमारा आप और सुनेंगे कई सारे प्यारे प्यारे गीत और होंगी ढेर सारी बातें। और तब तक ले दीजिए इजाज़त, सुनते रहिए, साथ रहिए 100.1 FM गोल्ड, खरा सोना।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने कहा है कि भारत में वर्तमान 7-8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ने की क्षमता है। श्री बंगा ने वैश्विक ऊर्जा दबाव, व्यापार अनिश्चितता और अल नीनो के प्रभाव के बावजूद देश के मौजूदा आर्थिक प्रदर्शन को मजबूत बताया। अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों की बैठक के दौरान एक साक्षात्कार में श्री बंगा ने कहा कि नए विकास आंकड़े भारत की अर्थव्यवस्था की बुनियादी स्थिति की मजबूती को दर्शाते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक से अलग यूरोपीय अर्थव्यवस्था आयुक्त वाल्दिस द्रोम्बोस्किस से मुलाकात की। वित्त मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने भारत यूरोपीय संघ आर्थिक और वित्तीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते और निवेश संरक्षण समझौते के लिए चल रही वार्ताओं पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि विचार विमर्श से शासन और सेवा वितरण में सुधार हो सके। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने, सोने की अनावश्यक खरीद और विदेशों में शादी ब्याह समारोह आयोजित करने से बचने का आह्वान किया है। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा आज जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं उससे उनके सपने साकार होंगे।
1: स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए। शादी ब्याह विदेशों में करते हैं, नहीं करना चाहिए। मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे, जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे, मुझे पक्का विश्वास है जब आजादी के 100 साल होंगे, हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुप्रत करेंगे।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कल से 3 दिन की यूक्रेन और पोलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा और पोलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री राडोस्लाव सिकोर्स्की के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना है, साथ ही क्षेत्रीय घटनाक्रमों और आपसी हित के मुद्दों पर भी चर्चा होगी। प्रवर्तन निदेशालय अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म पेरीमैच और अन्य के मामले में विभिन्न राज्यों में 12 स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत महाराष्ट्र में 5, दिल्ली NCR में 4, राजस्थान में 2 और गुजरात में 1 स्थान पर कुछ भुगतान कंपनियों के परिसरों में तलाशी ली जा रही है। इन कंपनियों ने नकद प्रबंधन व्यवस्था एजेंटों, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सचिवों के माध्यम से सट्टेबाजी की रकम को नकदी में परिवर्तित किया। इन्होंने अवैध प्रेषण के माध्यम से देश से बाहर रकम भेजने में मदद की है। प्रवर्तन निदेशालय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के टोल प्लाजा पर कथित धोखाधड़ी के मामले में 14 परिसरों में भी छापेमारी कर रहा है। ये तलाशी धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत की जा रही है। ये परिसर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, जम्मू, मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR और कोलकाता में स्थित हैं। नेपाल में जारी बचाव और राहत कार्यों में भारत हर संभव सहायता कर रहा है। आज नेपाल के लिए राहत और बचाव सामग्री लेकर 5वां भारतीय विमान रवाना हो गया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि विमान में 11 सदस्यीय बचाव दल और 5 टन से अधिक जरूरी दवाएं भेजी गई हैं। इस बीच नेपाल में बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 11,000 से अधिक हो गई है। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान जारी है। भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग मजबूत करने के उपायों की समीक्षा के लिए भारत अफगानिस्तान संयुक्त कार्य समूह की बैठक हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार कल हुई इस वर्चुअल बैठक में व्यापार को सुगम बनाने पर चर्चा हुई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने, सोने की अनावश्यक खरीद और विदेशों में शादी ब्याह समारोह आयोजित करने से बचने का आह्वान किया है। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा आज जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं उससे उनके सपने साकार होंगे।
1: स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए, शादी ब्याह विदेशों में करते हैं नहीं करना चाहिए, मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे, जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे, मुझे पक्का विश्वास है जब आजादी के 100 साल होंगे हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुप्रत करेंगे।
0: प्रवर्तन निदेशालय अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म पेरीमैच और अन्य के मामले में विभिन्न राज्यों में 12 स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत महाराष्ट्र में 5, दिल्ली NCR में 4, राजस्थान में 2 और गुजरात में 1 स्थान पर कुछ भुगतान कंपनियों के परिसरों में तलाशी ली जा रही है। निदेशालय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के टोल प्लाजा पर कथित धोखाधड़ी के मामले में 14 परिसरों में भी छापेमारी कर रहा है। ये तलाशी धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत की जा रही है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 1% की गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 548 अंक गिरकर 76,396 पर, जबकि निफ्टी 203 अंक गिरकर 23,852 पर पहुंच गया। स्क्वाश में भारत की अनाहत सिंह ने लंदन स्क्वाश क्लासिक के दूसरे दौर में जगह बना ली है। उधर बैडमिंटन में भारत के किदांबी श्रीकांत आज चीन ओपन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। भारत ने बाढ़ग्रस्त नेपाल की सहायता के लिए 5.5 टन दवाओं और उपकरणों के साथ 5वां विमान भेजा। मृतकों की संख्या 1100 से अधिक हुई। विश्व बैंक प्रमुख अजय बंगा ने भारत की आर्थिक वृद्धि की सराहना की। कहा, वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत में 8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ने की क्षमता। भारत अफगानिस्तान संयुक्त कार्य समूह की बैठक में द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग मजबूत करने के उपायों की समीक्षा। और किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि विचार विमर्श से शासन और सेवा वितरण में सुधार हो सके। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने, सोने की अनावश्यक खरीद और विदेशों में शादी ब्याह समारोह आयोजित करने से बचने का आह्वान किया है। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा आज जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं उससे उनके सपने साकार होंगे।
1: स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए। शादी ब्याह विदेशों में करते हैं, नहीं करना चाहिए। मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे, जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे, मुझे पक्का विश्वास है जब आजादी के 100 साल होंगे, हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुप्रत करेंगे।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर के तीसरे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। समारोह को संबोधित करते हुए श्री राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से नशीले पदार्थों का सेवन न करने का आह्वान किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त राज्य बनाने के प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राज्य के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सराहना की। उपराष्ट्रपति ने सभी स्नातक विद्यार्थियों को बधाई दी और विद्यार्थियों को पदक तथा प्रमाण पत्र प्रदान किए। भारत का 5वां विमान आज राहत और बचाव सामग्री लेकर नेपाल पहुंचा। विमान में 11 सदस्यों का बचाव दल, विशेष उपकरण और 5.5 टन दवाएं हैं। नेपाल में भारत के राजदूत ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत नेपाल में जारी राहत और बचाव कार्य में हर संभव सहायता कर रहा है। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1100 से अधिक हो गई है। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार अब तक 1114 शव बरामद हुए हैं। सबसे अधिक शव दक्षिणी चितवन जिले में बरामद किए गए। अधिकारियों ने बताया कि अब तक 95 मृतकों की पहचान के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। लगभग 4000 लोग अब भी लापता हैं। बाढ़ प्रभावित 11 जल पनबिजली परियोजनाओं से जुड़े 983 लापता लोगों की अभी तक कोई जानकारी नहीं है। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने कहा है कि भारत में 7-8% की मौजूदा वृद्धि दर से आगे बढ़ने की क्षमता है। श्री बंगा ने वैश्विक ऊर्जा दबाव, व्यापार अनिश्चितता और अल नीनो के प्रभाव के बावजूद देश के मौजूदा आर्थिक प्रदर्शन को मजबूत बताया। अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों की बैठक के दौरान एक साक्षात्कार में श्री बंगा ने कहा कि नए आंकड़े भारत की अर्थव्यवस्था की बुनियादी स्थिति की मजबूती को दर्शाते हैं।
2: Where India has learnings that can be shared elsewhere.
3: भारत विकास के उस पड़ाव पर पहुंच गया है जहां से वो अपने अनुभव दूसरों के साथ साझा कर सकता है। भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आधार से लेकर बैंक खातों और अब खेती बाड़ी के क्षेत्र में हो रहे कार्यों से दूसरे देश भी सीख सकते हैं, और इसलिए 2047 तक भारत जिस बड़े आकार की अर्थव्यवस्था बनने की ओर आगे बढ़ रहा है, वो न केवल अपनी वृद्धि दर से संभव होगा बल्कि विश्व अर्थव्यवस्था और विश्व राजनीति में भारत की जो अहमियत है उससे भी संभव होगा। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री भारत को अगले 15 वर्षों में जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं उसके लिए ये दोनों ही बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं।
2: प्राइम मिनिस्टर वांट्स इंडिया टू गो इन द कमिंग 15 इयर्स।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक के दौरान विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत विश्व बैंक समूह साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। इस दौरान अवसंरचना क्षेत्र में ऋण सुविधा बढ़ाने के लिए कार्यक्रम आधारित दृष्टिकोण पर भी विचार किया गया। श्रीमती सीतारामन ने अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक से अलग अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने वैश्विक आर्थिक स्थिति और भारत की बदलती विकास गति पर चर्चा की। वित्त मंत्री सीतारामन ने कल अमेरिका के एशविल में यूरोपीय अर्थव्यवस्था आयुक्त वाल्दिस दोम्ब्रोस्किस से भी मुलाकात की। वित्त मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने भारत यूरोपीय संघ आर्थिक और वित्तीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@airnews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIR News अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग मजबूत करने के उपायों की समीक्षा के लिए भारत अफगानिस्तान संयुक्त कार्य समूह की बैठक हुई। दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में संस्थागत सहयोग मजबूत करने और आगे की कार्रवाई करने पर सहमति व्यक्त की। इसमें सीमा शुल्क और संबंधित आंकड़ों के आदान प्रदान में सहयोग बढ़ाना, दवा और कृषि क्षेत्र में नियामकीय सहयोग, व्यापार संपर्क बेहतर करना तथा निवेश और व्यावसायिक संपर्क को बढ़ावा देना शामिल है। विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गरेटा ने कहा है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर भारत का दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय कानून, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान पर आधारित है। उन्होंने कहा कि भारत समुद्री और हवाई मार्गों की स्वतंत्रता, वैध व्यापार तथा विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करता है। श्री मार्गरेटा ने कल पलाऊ के कोरोर में आयोजित 55वें प्रशांत द्वीप समूह फोरम नेताओं के सत्र को संबोधित किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कल से 3 दिन की यूक्रेन और पोलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा और पोलैंड के उप प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री राडोस्लाव सिकोर्स्की के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना है। संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की शुरुआत की। उन्होंने डाकघर आधुनिकीकरण योजना के तहत तैयार अत्याधुनिक प्रधान डाकघर का लोकार्पण किया। नए डाकघर में स्पीड पोस्ट, बचत बैंक, डाक जीवन बीमा, आधार, पार्सल और वित्तीय सेवाएं एक ही जगह मिलेंगी। विदेश और पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने आज लद्दाख के करगिल में डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। इस केंद्र का उद्घाटन करगिल के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है और इससे जिले तथा आसपास के क्षेत्रों के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई है। प्रवर्तन निदेशालय अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म पेरीमैच और अन्य के मामले में विभिन्न राज्यों में 12 स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत महाराष्ट्र में 5, दिल्ली NCR में 4, राजस्थान में 2 और गुजरात में 1 स्थान पर कुछ भुगतान कंपनियों के परिसरों में तलाशी ली जा रही है। निदेशालय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के टोल प्लाजा पर कथित धोखाधड़ी के मामले में 14 परिसरों में भी छापेमारी कर रहा है। ये तलाशी धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: आपको हर खबर से रखे अपडेट @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगहों पर तेज बारिश का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पंजाब, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी कुछ क्षेत्रों में तेज बारिश हो सकती है। बिहार के विभिन्न जिलों में बाढ़ का संकट गहराता जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि नेपाल और पड़ोसी राज्यों के साथ ही प्रदेश में हो रही लगातार बारिश से गंगा, गंडक, कोसी समेत प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है।
5: बिहार में प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से वाल्मीकि नगर, कोसी, वीरपुर, सोन, इंद्रपुरी बराज से जलाश्रय में बढ़ोतरी से संबंधित जिलों में बाढ़ का संकट गहरा गया है। भागलपुर, औरंगाबाद, बेगूसराय, बक्सर, भोजपुर, मुंगेर, पटना, खगड़िया, वैशाली और जहानाबाद के बाद कैमूर जिले में भी बाढ़ के हालात उत्पन्न हो गए हैं। जिला प्रशासन ने लगातार हो रही बारिश और दुर्गावती जलाशय से पानी छोड़े जाने के बाद फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी किया है। प्रशासन की ओर से नदी किनारे बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सविता पारिक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: उधर झारखंड में पिछले 3 दिनों से हो रही तेज बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है।
6: मौसम विभाग रांची के अनुसार पिछले 3 दिनों से झारखंड में हो रही भारी बारिश के कारण भैरवी, दामोदर, स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। रांची में लगातार बारिश के कारण काके और गेतलसूद डैम के साथ साथ तेनूघाट और चांडिल डैम से पानी छोड़ा गया है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इस बीच पिछले 3 दिनों की बारिश में राज्य भर में कई पुल और सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के कई गांवों का प्रखंड और जिला मुख्यालय से संपर्क प्रभावित हुआ है। लोहरदगा जिला से अधिक प्रभावित रहा है, जहां कई पुल क्षतिग्रस्त या बह गए हैं, जिससे बड़ी आबादी

0: आदि प्रभावित हुई है। मौसम विभाग ने आज सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पलामू और गढ़वा में रेड अलर्ट, जबकि लातेहार, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, सरायकेला खरसावा और पूर्वी सिंहभूम में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम अगले 36 घंटे में झारखंड के पश्चिमी हिस्सों से होकर आगे बढ़ेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: पंजाब सरकार ने राज्य में धान की पराली जलाने पर सख्ती से रोक लगाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए डिजिटल तथा मल्टीमीडिया माध्यमों से बहुस्तरीय सूचना और जागरूकता अभियान चलाने को कहा है। बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया के माध्यम से भी जागरूकता फैलाने की योजना है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पराली प्रबंधन रणनीति पर कल हुई बैठक में ये बात कही। बैडमिंटन में भारत के किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा आज चीन ओपन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंच गए। श्रीकांत ने पुरुष सिंगल्स के शुरुआती मैच में चीनी ताइपे के ची यूनजेन को हराया। पुरुष सिंगल्स के एक अन्य मुकाबले में लक्ष्य सेन कनाडा के विक्टर लाई से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। महिला सिंगल्स के पहले दौर के मुकाबले में भारत की तन्वी ने डेनमार्क की अमाली चुल्स को कड़े मुकाबले में लगातार सेटों से हराया। भारत की मिक्स डबल्स जोड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो ने भी थाईलैंड के तोन्नाकोन साहेंग और तोनिचा साहेंग को हराकर अगले दौर में जगह बनाई। स्क्वाश में भारत की अनाहत सिंह ने लंदन स्क्वाश क्लासिक के दूसरे दौर में जगह बना ली है। पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में भारत के रमित टंडन ने कतर के अब्दुल्ला अल तमीमी को हराया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.7% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 516 अंक गिरकर 76,428 पर, जबकि निफ्टी 183 अंक गिरकर 23,873 पर पहुंच गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। भारत ने बाढ़ग्रस्त नेपाल की सहायता के लिए 5.5 टन दवाओं और उपकरणों के साथ 5वां विमान भेजा। मृतकों की संख्या 1100 से अधिक हुई। विश्व बैंक प्रमुख अजय बंगा ने भारत की आर्थिक वृद्धि की सराहना की। कहा, वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत में 8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ने की क्षमता। भारत अफगानिस्तान संयुक्त कार्य समूह की बैठक में द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग मजबूत करने के उपायों की समीक्षा। और किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंचे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ফিরে আসছি সংবাদ বিরতির পর।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে প্রিয়ঙ্কা অরোড়া। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि विचार विमर्श से शासन और सेवा वितरण में सुधार हो सके। भारत से राहत और बचाव सामग्री लेकर पांचवा विमान आज नेपाल पहुंचा। ये विमान 11 सदस्यीय बचाव दल, विशेष उपकरण और 5 टन से अधिक दवाएं लेकर गया है। नेपाल में भारत के राजदूत ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत नेपाल में जारी राहत और बचाव कार्य में हर संभव सहायता कर रहा है। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1100 से अधिक हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि अब तक 95 मृतकों की पहचान के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। लगभग 4000 लोग अब भी लापता हैं। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने कहा है कि भारत में 7-8% की मौजूदा वृद्धि दर से आगे बढ़ने की क्षमता है। श्री बंगा ने वैश्विक ऊर्जा दबाव, व्यापार अनिश्चितता और अलनीनो के प्रभाव के बावजूद देश में मौजूद आर्थिक प्रदर्शन को मजबूत बताया। अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों की बैठक के दौरान एक साक्षात्कार में श्री बंगा ने कहा कि नए आंकड़े भारत की अर्थव्यवस्था की बुनियादी स्थिति की मजबूती को दर्शाते हैं।
2: Where India has learnings that can be shared elsewhere.
3: भारत विकास के उस पड़ाव पर पहुंच गया है जहां

0: से वो अपने अनुभव दूसरों के साथ साझा कर सकता है। भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आधार से लेकर बैंक खातों और अब खेती बाड़ी के क्षेत्र में हो रहे कार्यों से दूसरे देश भी सीख सकते हैं और इसलिए 2047 तक भारत जिस बड़े आकार की अर्थव्यवस्था बनने की ओर आगे बढ़ रहा है वो न केवल अपनी वृद्धि दर से संभव होगा बल्कि विश्व अर्थव्यवस्था और विश्व राजनीति में भारत की जो अहमियत है उससे भी संभव होगा। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री भारत को अगले 15 वर्षों में जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं उसके लिए ये दोनों ही बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं।
1: प्राइम मिनिस्टर वांट्स इंडिया टू गो इन द कमिंग 15 इयर्स।
2: भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग मजबूत करने के उपायों की समीक्षा के लिए भारत अफगानिस्तान संयुक्त कार्य समूह की बैठक हुई। दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में संस्थागत सहयोग मजबूत करने और आगे की कार्रवाई पर सहमति व्यक्त की। इसमें सीमा शुल्क और इससे संबंधित आंकड़ों के आदान प्रदान में सहयोग बढ़ाना, दवा और कृषि क्षेत्र में नियामकीय सहयोग, व्यापार संपर्क बेहतर करना तथा निवेश और व्यावसायिक संपर्क को बढ़ावा देना शामिल है। प्रवर्तन निदेशालय अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म परी मैच और अन्य के मामले में विभिन्न राज्यों में 12 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत महाराष्ट्र में 5, दिल्ली NCR में 4, राजस्थान में 2 और गुजरात में 1 स्थान पर कुछ भुगतान कंपनियों के परिसरों में छापेमारी की जा रही है। इन कंपनियों ने कैश मैनेजमेंट सिस्टम एजेंटों, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सचिवों के माध्यम से सट्टेबाजी की रकम को नकदी में परिवर्तित किया। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगहों पर तेज बारिश का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पंजाब, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी कुछ क्षेत्रों में तेज बारिश हो सकती है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में आज तेज बारिश हुई। भारत के किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने पुरुष सिंगल्स के शुरुआती मैच में चीनी ताइपे के ची यूजेन को हराया। महिला सिंगल्स के पहले दौर में भारत की तन्वी शर्मा ने डेनमार्क की अमाली चुल्स को कड़े मुकाबले में लगातार सेटों में हराया। स्क्वाश में भारत की अनाहत सिंह ने लंदन स्क्वाश क्लासिक के दूसरे दौर में जगह बना ली है। उधर पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में भारत के रमी टंडन ने कतर के अब्दुल्ला अल तमीमी को हराया। हालांकि वी चोटरानी को स्विट्जरलैंड के यानिक विलहेमी से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani. The news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi will address the valedictory session of the departmental summit of Jal Shakti Ministry in New Delhi this evening. The two-day departmental summit commenced yesterday is the first in a series of departmental summits envisioned by the Prime Minister to strengthen the spirit of Team India and deepen cooperative federalism. The summit is bringing together the centre and the states to deliberate on critical sectoral priorities and evolve time-bound action plans. The summit is focusing on 4 key areas covering timely implementation of water infrastructure projects, Jal Sanchay Jan Bhagidari, Catch the Rain, Drinking Water Source Sustainability and Jal Jeevan Mission 2.0. India continues to extend all possible assistance to Nepal in the ongoing rescue and relief efforts. The fifth Indian aircraft carrying relief and rescue assistance has arrived in Nepal. In a social media post, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said the aircraft is carrying an 11-member rescue team equipped with specialized equipments along with 5.5 tons of essential medicines. Meanwhile, a 19-member Indian forensic team has begun analyzing DNA samples alongside forensic experts to assist in identifying people affected by the recent flash floods in Nepal. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman met World Bank President Ajay Banga on the sidelines of the G20 Finance Ministers and Central Bank Governors meeting in Nashville, United States. The two leaders discussed further strengthening the India-World Bank Group partnership. In an interview, World Bank President Ajay Banga said, India has the potential to grow beyond its current 7-8% trajectory. Mr. Banga described the country's latest economic performance as robust, despite global energy pressures, trade uncertainty, and the impact of El Nino. Union Minister for Environment, Forest and Climate Change, Bhupendra Yadav, today said that conservation with harmony and human nature coexistence should be the foundation of ecological conservation. Mr. Yadav made these remarks after inaugurating a two-day international workshop on the theme Tiger Landscapes, Conservation, Bioeconomy and Ecotourism as Pillars for Livelihood and Income Generation in New Delhi. Addressing the inaugural session, Mr. Yadav highlighted India's conservation journey under Project Tiger, emphasizing that the survival of tigers is intrinsically linked to the health of forests, wildlife corridors, and local communities.
4: You must consider that we are doing its conservation for our own protection. We are conserving nature. So first of all, it is human arrogance that he is above nature. The day humans learn that humility, that nature is supreme to them, that they are not conserving nature but serving nature, that day coexistence will come.
3: Prime Minister of Belgium, Bart De Wever, will be on a three-day visit to India beginning today. During the visit, he will hold bilateral talks with Prime Minister Modi to discuss the entire spectrum of bilateral relations and regional and global issues of mutual interest. Prime Minister De Wever will also deliver a keynote address at a business event in the context of the India-EU Free Trade Agreement. He will also travel to Mumbai, where he will engage with various stakeholders, including from the diamond, ports and logistics sectors. Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC has claimed that it carried out attacks on the U.S. Ali al-Salem base in Kuwait, a military camp housing U.S. Marines in Jordan, and destroyed a U.S. surveillance balloon control system at an American base in Iraq. In the statement, the IRGC said that it successfully hit the living quarters and command post of the U.S. Ali al-Salem base's American commander in Kuwait. The retaliation came after U.S. has conducted fresh strikes on IRGC targets inside Iran. In badminton, India's Kidambi Srikanth and Tanvi Sharma progressed to the second round of the China Open tournament today. Srikanth defeated Chinese Taipei's Qi Yu Jin in men's singles opener in Shenzhen. In another men's singles clash, Lakshya Sen was knocked out of the tournament after he lost against Canada's Victor Lai. And that is the end of this news bulletin.
5: কথায় গোল্ডেন সময় আপনি শুনছেন 100.1 FM গোল্ড 100.1 FM গোল্ড FM গোল্ড কিছু গান কিছু কথা আপনি শুনছেন সুরেলা সফর 100.1 FM গোল্ডে সুরেলা সফর সুরেলা সফর সুরেলা সফরে আজ অমূল্য আধুনিক অমূল্য আধুনিক

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों की महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा दायित्व को बढ़ावा देना और विचार विमर्श से सुशासन और सेवा वितरण में सुधार लाना है। भारत से राहत सामग्री लेकर पांचवा विमान आज नेपाल पहुंचा। इसमें 11 सदस्यीय बचाव दल, विशेष उपकरण और 5 टन से अधिक दवाएं हैं। नेपाल में भारत के राजदूत ने बताया कि भारत नेपाल में जारी राहत और बचाव कार्य में हर संभव सहायता कर रहा है। इस बीच नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 1100 से अधिक हो गई है। अधिकारियों ने बताया

पांचवा विमान आज नेपाल पहुंचा। इसमें 11 सदस्यीय बचाव दल, विशेष उपकरण और 5 टन से अधिक दवाएं हैं। नेपाल में भारत के राजदूत ने बताया कि भारत नेपाल में जारी राहत और बचाव कार्य में हर संभव सहायता कर रहा है। इस बीच नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 1100 से अधिक हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि अब तक 95 मृतकों की पहचान के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। लगभग 4000 लोग अब भी लापता हैं। बिहार के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति

0: डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आधार से लेकर बैंक खातों और अब खेती बाड़ी के क्षेत्र में हो रहे कार्यों से दूसरे देश भी सीख सकते हैं और इसलिए 2047 तक भारत जिस बड़े आकार की अर्थव्यवस्था बनने की ओर आगे बढ़ रहा है वो न केवल अपनी वृद्धि दर से संभव होगा बल्कि विश्व अर्थव्यवस्था और विश्व राजनीति में भारत की जो अहमियत है उससे भी संभव होगा।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने वैश्विक आर्थिक स्थिति और भारत की बदलती विकास गति पर चर्चा की। वित्त मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेताओं ने विश्लेषण क्षमता मजबूत करने, सुदृढ़ व्यापक आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देने और वैश्विक आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए भारत और IMF के बीच निरंतर सहयोग के महत्व पर बल दिया। भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग मजबूत करने के उपायों की समीक्षा के लिए भारत अफगानिस्तान संयुक्त कार्य समूह की बैठक हुई। दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में संस्थागत सहयोग मजबूत करने और आगे की कार्रवाई पर सहमति जताई। इसमें सीमा शुल्क और इससे संबंधित आंकड़ों के आदान प्रदान में सहयोग बढ़ाना, दवा और कृषि क्षेत्र में सहयोग, व्यापार संपर्क बेहतर करना तथा निवेश और व्यावसायिक संपर्क को बढ़ावा देना शामिल है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने आज लद्दाख के करगिल में डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना भी उपस्थित थे। उपराज्यपाल ने कहा कि करगिल और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को कई वर्षों से पासपोर्ट संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने कहा कि अब करगिल और आसपास के लोगों को पासपोर्ट संबंधी सेवाओं के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में अत्याधुनिक प्रधान डाकघर का लोकार्पण किया। नए डाकघर में स्पीड पोस्ट, बचत बैंक, डाक जीवन बीमा, आधार, पार्सल और वित्तीय सेवाएं मिलेंगी। यहां दिव्यांगजनों के लिए सुगम प्रवेश और नागरिकों के लिए सुविधाजनक प्रतीक्षा कक्ष की व्यवस्था भी है। किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने पुरुष सिंगल्स में चीनी ताइपे के ची यू जेन को हराया। हालांकि लक्ष्य सेन को कनाडा के विक्टर लाई से हार का सामना करना पड़ा। महिला सिंगल्स में तन्वी ने डेनमार्क की अमाली शुल्ज को हराया जबकि देविका सिहा को हार का सामना करना पड़ा। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो की मिक्स डबल्स जोड़ी थाईलैंड के टोनाकोन साहेंग और टोनिचा साहेंग को हराकर दूसरे दौर में पहुंच गई। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगहों पर तेज वर्षा का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: craft or fuel. The leaves are used in traditional roofing and decoration in some regions. This makes coconut a good example for students to understand natural resource use, zero wastage thinking, and the relationship between agriculture and daily everyday life. And yes, dear people, tons of usage of the coconut tree and the fruit, as we said. And happy World Coconut Day to all of us, and let us celebrate the tree of life and its many gifts. Coconut teaches us that nature gives more when we use it wisely. From food to farming, the coconut supports life in many ways. And we are celebrating Coconut World Coconut Day in its own way. Yes, dear people, and also the coconut palm reminds us that every part of nature has value. Respect farmers, value crops, and protect nature. The coconuts are not just fruits. They are a symbol of usefulness, resilience, and sustainability. These are certain reminders for us, for students, for normal civilians, for us in everyday life. And of course, there are tons of activities for all of us. We can make posters, we can write a short speech, we can, of course, have a coconut on this day, plant coconut trees if you want, and lots of ways you can use a coconut or celebrate this coconut day. So yes, this is your friend and RJ Shantani saying goodbye and see you again.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों की महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा दायित्व को बढ़ावा देना और विचार विमर्श से सुशासन और सेवा वितरण में सुधार लाना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के महासागर दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में सेशल्स एक महत्वपूर्ण साझेदार है। नई दिल्ली में सेशल्स के संसद के अध्यक्ष अजरेल अनेस्टा के साथ बातचीत में श्री बिरला ने कहा कि भारत और सेशल्स वैश्विक दक्षिण की आवाज को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि निरंतर संसदीय संवाद से दोनों देशों की साझेदारी को नई गति मिलेगी तथा दीर्घकालिक संबंध और मजबूत होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमरीका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने वैश्विक आर्थिक स्थिति और भारत की बदलती विकास गति पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने विश्लेषण क्षमता मजबूत करने, सुदृढ़ व्यापक आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देने और वैश्विक आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए भारत और IMF के बीच निरंतर सहयोग के महत्व पर बल दिया। भारत से राहत सामग्री लेकर पांचवा विमान आज नेपाल पहुंचा। इसमें 11 सदस्यीय बचाव दल, विशेष उपकरण और 5 टन से अधिक दवाएं हैं। नेपाल में भारत के राजदूत ने बताया कि भारत नेपाल में जारी राहत और बचाव कार्य में हर संभव सहायता कर रहा है। इस बीच नेपाल में बाढ़ में मृतकों की संख्या 1100 से अधिक हो गई है। लगभग 4000 लोग अभी भी लापता हैं। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुर में अत्याधुनिक प्रधान डाकघर का लोकार्पण किया। नए डाकघर में स्पीड पोस्ट, बचत बैंक, डाक जीवन बीमा, आधार, पार्सल और वित्तीय सेवाएं मिलेंगी। ये दिव्यांगजनों के लिए सुगम प्रवेश और नागरिकों के लिए सुविधाजनक प्रतीक्षा कक्ष की व्यवस्था भी है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने आज लद्दाख के करगिल में डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि अब करगिल और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को पासपोर्ट संबंधी सेवाओं के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी ने आज पंजाब में अधिकारियों के तबादले और तैनाती में कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी सरकार की आलोचना की है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि इन दिनों वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले और तैनाती का एक नया रेट कार्ड तय आधार पर की जा रही है।
2: मुख्यमंत्री भगवंत मान को पंजाब की जनता को उत्तर देना पड़ेगा आपके इशारों पर। जब ये कैश फॉर ट्रांसफर घोटाला हो रहा है तो इसका किंग पिन अरविंद केजरीवाल है या नहीं, बताइए।

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने अनिवार्य सुरक्षा उपायों के बिना विस्फोटक पदार्थों की ऑनलाइन लिस्टिंग और बिक्री के लिए एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण के अनुसार प्लेटफॉर्म पर लाइसेंस सत्यापन, खरीदार पात्रता जांच और अनिवार्य सुरक्षा संबंधी खुलासे के बिना अमोनियम नाइट्रेट की ऑनलाइन लिस्टिंग सुविधा दी जा रही थी। प्राधिकरण ने कंपनी को विस्फोटक के रूप में वर्गीकृत किसी भी अन्य पदार्थ की लिस्टिंग, होस्टिंग, विज्ञापन या बिक्री पर तुरंत रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। नौसेना का नौकायान प्रशिक्षण पोत INS सुदर्शनी अपने समुद्री अभियान लोकायान 26 के अंतर्गत स्पेन के बार्सिलोना पहुंचा। बार्सिलोना में पोत स्पेन की नौसेना के साथ पेशेवर और सांस्कृतिक गतिविधियों में शामिल आगंतुक शुक्रवार को पोत को देखने जा सकेंगे। ये भारत की समुद्री विरासत को देखने का अवसर प्रदान करेगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पंजाब, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी कुछ क्षेत्रों में तेज बारिश की संभावना है। किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो मिक्स्ड डबल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शोटी पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर, FM गोल्ड पर।
1: आज चाय और क्लासिक्स के साथ चाय का स्पेशली मज़ा जो है वो दोगुना हो गया है, क्योंकि मौसम ने ये एक बड़ा ही खूबसूरत सा आपको मौका दिया है कि आप अपनी चाय या शाम की कॉफ़ी का जो आनंद है वो कुछ पकौड़ों के साथ या फिर ऐसा कुछ फ्राइड, कहते ना कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन आज का ये जो दिन है ना, तो ऐसा कुछ फ्राइड जो आपके दिल को गुदगुदा जाए, आपके टेस्ट बड्स को बहुत भाए, आप ट्राई कर सकते हैं। और ये मौका केवल और केवल बारिश ने ही ये दिया है आपको, इसलिए आज का ये कार्यक्रम, क्योंकि चाय है हमारे साथ क्लासिक्स के साथ, इसलिए खास है आज का ये कार्यक्रम। बारिश के सीजन में चाय, साथ में क्लासिक्स और चाय के साथ टाई का अगर यहाँ पर मिलन हो जाता है तो विशेष तो होगा ही सब कुछ। तो चलिए चाय पीते पीते, केवल अकेली चाय न पीजिए, आप हमें सुनिए और साथ में कुछ चाय वगैरह भी लीजिए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते। खूबसूरत गाने क्लासिक्स आपका कर रहे हैं इंतज़ार, लेकिन पहले हम लेंगे एक छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा कमर्शियल ब्रेक। आप लोग बने रहे मेरे साथ, चैनिका है हाजिर केवल केवल FM गोल्ड कोलकाता पर। और हाँ, याद दिला दूं कि हम एकदम सही समय बताते हैं, तो घड़ी आपकी हाथ वाली या दीवार वाली उसे आप मिला ले, 5:18:36 फिलहाल स्टूडियो की घड़ी में एकदम सही समय।
2: Great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर, FM गोल्ड पर।

100.1 FM Gold Presents परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति प्यारे श्रोताओं, आज परियोजना प्रस्तुति के अंतर्गत हम बात करेंगे एकीकृत बागवानी विकास मिशन की। एकीकृत बागवानी विकास मिशन फलों, सब्जियों, जड़ और कंद फसलों, मशरूम, मसाले, फूल, सुगंधित पौधों, नारियल, काजू, कोको और बांस जैसे उत्पादों के बहुमुखी विकास की केंद्रीय वित्त पोषित योजना है। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों को छोड़कर देश के सभी प्रदेशों में लागू इस योजना से जुड़े विकास कार्यक्रमों के कुल बजट का 85% हिस्सा भारत सरकार देती है, जबकि शेष 15% राज्य सरकारें खुद वहन करती हैं। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के मामले में 100% बजट केंद्र सरकार ही वहन करती है। यह योजना किसानों को फल, सब्जी, मसाले, फूल और अन्य बागवानी फसलों की खेती के लिए वित्तीय और साथ ही तकनीकी सहायता भी प्रदान करती है। क्या है इस खास योजना का उशन जी? इस खास योजना को इसलिए लागू किया गया ताकि देश में बागवानी फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हो, किसानों को विभिन्न बागवानी गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता मिले, तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध हो, साथ ही क्लस्टर रोपण, संरक्षित खेती, एकीकृत कीट और पोषक तत्व प्रबंधन और बागवानी मशीनीकरण को बढ़ावा मिले, और इसके अलावा गुणवत्तापूर्ण जो बीज हैं और जो रोपण सामग्री के उत्पादन के लिए नर्सरी और ऊतक संवर्धन इकाइयां हैं उनकी स्थापना की जा सके, पुराने और अनुत्पादक बगीचों का पुनरुद्धार हो, जीर्णोद्धार हो, और कटाई पश्चात प्रबंधन और प्रोसेसिंग के माध्यम से किसानों को फसल का उचित मूल्य भी प्राप्त हो। गौरतलब है कि इस योजना को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय वर्ष 2014-15 से लगातार कार्यान्वित कर रहा है। इसे हरित क्रांति कृषोन्नति योजना के तहत लागू किया गया है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन ने बागवानी फसलों के क्षेत्र को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने कृषि भूमि की उपज और उत्पादकता की गुणवत्ता में सुधार लाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके लागू होने से भारत न केवल बागवानी क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुआ है, बल्कि इसने भूख, अच्छा स्वास्थ्य और देखभाल, गरीबी में कमी, लैंगिक समानता जैसे सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, आज हमने बात की एकीकृत बागवानी विकास मिशन के बारे में। 100.1 FM Gold Presents परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की।

0: परियोजना प्रस्तुति
1: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन टू लर्न टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल. दिस इज द ब्रिक्स 2026. A moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम. आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स. चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर. चाय और क्लासिक्स. चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर. FM गोल्ड पर.

0: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर, FM गोल्ड पर।
1: चैनिका के साथ सुन रहे हैं एफएम गोल्ड कोलकाता और कार्यक्रम जारी है चाय और क्लासिक्स। 5:37 फिलहाल स्टूडियो की घड़ी में एकदम सही समय। क्या आप जानते हैं कि आज का ये दिन जो है ये क्यों खास है? 1999 में भारतीय तैराक बुला चौधरी ने इंग्लिश चैनल 2 बार पार करने वाली प्रथम एशियाई महिला का दर्जा जो है वो प्राप्त किया। 2 जनवरी 1970 को कलकत्ता में आपका जन्म हुआ और लंबी दूरी की एक अद्भुत महिला तैराक हैं आप। आपने 5 महाद्वीपों के 7 समुद्र तैर कर पार किए हैं। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित बुला चौधरी को जल परी की उपाधि दी गई थी और उन्होंने इंग्लिश चैनल को 2 बार तैर कर पार किया है और वो 2 सितंबर 1999 का दिन था जब उन्होंने दूसरी बार इंग्लिश चैनल पार करने का गौरव हासिल किया था और ये कारनामा अंजाम देने वाली वो एशिया की पहली महिला बनी। 2003 में ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से आप सम्मानित की गईं।

और आज कुछ विशेष लोग मना रहे हैं अपना जन्मदिन। सबसे पहले तो जिक्र करना चाहूंगी अभिनेत्री साधना का। 1941 में आज ही के दिन आपका जन्म हुआ और 60 के दशक की बहुत लोकप्रिय और खूबसूरत अदाकारा रहीं आप। 1955 की फिल्म श्री 420 के गाने में कोरस कलाकार के रूप में आपने काम किया था और साल 1960 में आई पहली फिल्म लव इन शिमला से आपको बड़ी सफलता और पहचान मिली। राज खोसला की सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों में जो ट्रायोलॉजी उन्होंने बनाई वो कौन थी, मेरा साया और अनीता, उसमें बेहतरीन अभिनय का प्रदर्शन आपने किया और आपको मिस्ट्री गर्ल का उपनाम मिला था। और आपका जो हेयर स्टाइल साधना कट, उसकी तो अब क्या ही कहें, मतलब मुरीद केवल आपके लड़के नहीं थे बल्कि लड़कियां भी थी और न जाने कितनी लड़कियों ने वो जो हेयर स्टाइल है वो रिपीट किया। चलिए साधना की फिल्म मेरा साया का ये गीत सुनते हैं और फिर उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगी। सुनते रहें चाय और क्लासिक्स।

0: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर, FM गोल्ड पर।
1: सर 1950 में आज ही के दिन

डॉक्टर शोभना नारायण का जन्म हुआ था। आप कथक की सुप्रसिद्ध प्रतिपादक हैं और 1992 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार और 2001 में वर्ष 1999-2000 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से आपको सम्मानित किया गया था। शोभना नारायण बहुआयामी प्रतिभा की धनी है, एक अग्रणी व्यक्तित्व है देश की, जिन्होंने एक नृत्यांगना, कोरियोग्राफर, गुरु, शोधकर्ता, आयोजक और लेखिका के रूप में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। आपकी शानदार प्रस्तुतियां परंपरा में रची बसी हैं, फिर भी उनमें कलात्मक नवाचारों और सामाजिक चेतना की ताजी हवा महसूस की जा सकती है। नए रास्ते बनाते हुए आपने दो बड़े कठिन पेशेवर करियरों को एक साथ मिला दिया। आप एक लोक सेवक हैं, एक पब्लिक सर्वेंट हैं और एक मान्यता प्राप्त कथक नृत्यांगना हैं, गुरु हैं साथ ही, और इन दोनों रोल्स का आपने पूरी निष्ठा से पालन किया, दोनों में ही उत्कृष्ट सफलता हासिल की। डॉक्टर शोभना नारायण के आसावरी समूह को ऐसे कई अभूतपूर्व कार्यों का श्रेय दिया जाता है जो सामाजिक मुद्दों को संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत करते हैं। वो 16 पुस्तकों और इंटैक, यूनेस्को तथा अन्य प्रतिष्ठित संगठनों के लिए लिखे गए अनेक लेखों की लेखिका भी हैं। गहन शोध के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में स्थित 16 कथक गांवों की खोज हुई है जो आपके द्वारा ही संभव हो पाई। आपके जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं और आगे लिए चलते हैं कार्यक्रम को आप सबके लिए। अगला गीत किशोर कुमार की आवाज में, फिल्म का नाम पड़ोसन। सुनते रहें, साथ रहें।

एशिया की पहली महिला लोको पायलट आज ही के दिन जन्मी थी। और क्या है उनका नाम और परिचय, अगर आप जानना चाहते हैं तो थोड़ा इंतजार करें। उससे पहले मैं आपको बताऊंगी एक बेहद बेहद जरूरी सूचना जो हमें अभी अभी मौसम विभाग से प्राप्त हुई है। मौसम विभाग से मिली ताजा जानकारी के अनुसार एक ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है और इसमें कहा गया है कि मध्यम दर्जे की आंधी तूफान साथ में गरज के साथ तेज बारिश होने के आसार हैं, संभावना है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी और ऐसा आने वाले 2 से 3 घंटों में होने वाला है बांकुड़ा, पश्चिम वर्धमान जिलों में, साथ ही बीरभूम में भी। तो बांकुड़ा, बीरभूम और पश्चिम वर्धमान जिलों में हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं उनके लिए ये चेतावनी, एक ऑरेंज वार्निंग कि आपके वहां मध्यम बारिश बहुत तेज, साथ ही मध्यम आंधी तूफान, साथ में गरज और बिजली गिरने के आसार हैं और तेज हवाएं चलेंगी 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। सावधान रहें आप, सतर्क रहें और हमारे साथ बने रहें। और चलिए अब बात करें एशिया की पहली महिला लोको पायलट की। महाराष्ट्र के सतारा जिले में आपका जन्म हुआ। जी हाँ, भारतीय हैं आप, आपका नाम है सुरेखा यादव। आज ही के दिन आप जन्मी 1965 में सतारा में और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने के बाद 1989 में भारतीय रेलवे ज्वाइन किया आपने। 1990 में सहायक ड्राइवर बनी और एशिया की पहली महिला ट्रेन चालक का गौरव आपने हासिल किया। 1996 में पहली बार मालगाड़ी चलाई और साल 2000 में मोटर वुमन बनी। 2010 में घाट ड्राइवर के रूप में योग्य घोषित होकर कठिन पहाड़ी रास्तों पर ट्रेनें चलाई। 13 मार्च 2023 को आपने शोलापुर और मुंबई के बीच पहली वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई और अपने करियर के अंतिम दिनों में हजरत निजामुद्दीन CA-70 मार्ग पर प्रतिष्ठित राजधानी एक्सप्रेस भी चलाई। भारतीय रेलवे में 36 से अधिक वर्षों की सेवा के बाद पिछले साल सुरेखा यादव सेवानिवृत्त हो गई और मध्य रेलवे ने इस मौके पर उन्हें एक मार्गदर्शक बताया और ये कहा कि उनकी ये ऐतिहासिक यात्रा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। हम सबकी तरफ से सुरेखा यादव को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। सुन रहे हैं आप चाय और क्लासिक सैनिका के साथ और देखते ही देखते हमारा ये जो पहला भाग है ये रैप अप हो रहा है। समय आगे बढ़ रहा है अपनी रफ्तार से, तो हम भी चलिए आपको सुनवाएं एक गीत इसके साथ, बस ताल से ताल मिलाते हुए हमें भी आगे बढ़ना है और इस गाने के बाद मुझे लगता है कि हम चले जाएंगे समय के अनुसार छोटे से न्यूज़ ब्रेक की तरफ और फिर मैं वापस आऊंगी आपके साथ समाचार सुनने के बाद। तो इसलिए आप लोग कहीं ना जाएं, बने रहें ओनली ऑन FM Gold कोलकाता।

खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों की महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा दायित्व को बढ़ाना और विचार विमर्श से सुशासन और सेवा वितरण में सुधार लाना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा, रणनीतिक स्वायत्तता और आर्थिक अनुकूलन से अलग नहीं किया जा सकता। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में डॉक्टर सिंह ने आत्मनिर्भर, स्वदेशी, किफायती और प्रौद्योगिकी आधारित ऊर्जा क्षेत्र के विकास का आह्वान किया। उन्होंने वर्तमान समय को स्वच्छ ऊर्जा सहित एक सुरक्षित और टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की ओर आ रहे बदलाव का समय बताया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज नई दिल्ली में नागर विमानन क्षेत्र में व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के उपायों की समीक्षा की। श्री नायडू ने अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया आसान, पारदर्शी, स्वचालित और समयबद्ध बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री नायडू ने संबंधित अधिकारियों को इस प्रक्रिया को सरल और स्वचालित बनाने तथा 15 दिन के भीतर उनके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में अत्याधुनिक प्रधान डाकघर का लोकार्पण किया। नए डाकघर में स्पीड पोस्ट, बचत बैंक, डाक जीवन बीमा, आधार, पार्सल और वित्तीय सेवाएं मिलेंगी। यहां दिव्यांगजनों के लिए सुगम प्रवेश और नागरिकों के लिए सुविधाजनक प्रतीक्षा कक्ष की व्यवस्था भी है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने आज लद्दाख के करगिल में डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि अब करगिल और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को पासपोर्ट संबंधी सेवाओं के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में अधिकारियों के तबादले और तैनाती में कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी सरकार की आलोचना की है। नई दिल्ली में आज पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि इन दिनों वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले और तैनाती रेड कार्ड के आधार पर की जा रही है।
1: मुख्यमंत्री भगवंत मान को पंजाब की जनता को उत्तर देना पड़ेगा। आपके इशारों पर जब ये कैश फॉर ट्रांसफर घोटाला हो रहा है तो इसका किंग पिन अरविंद केजरीवाल है या नहीं, बताइए।
0: एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद आज इसकी घोषणा की गई। साथ ही ट्रस्ट में 3 नए सदस्यों की नियुक्ति भी की गई है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने अनिवार्य सुरक्षा उपायों के बिना विस्फोटक पदार्थों की ऑनलाइन बिक्री के लिए एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण के अनुसार प्लेटफॉर्म पर लाइसेंस सत्यापन, खरीदार पात्रता जांच और अनिवार्य सुरक्षा संबंधी जानकारी के बिना अमोनियम नाइट्रेट की ऑनलाइन लिस्टिंग सुविधा दी जा रही थी। सरकार ने वर्ष 2024 के लिए तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। बलजीत कौर और स्काल जेंग रिगजिन को भू साहसिक अभियानों, रिमो साहा को जल साहसिक अभियान और शिव प्रसाद चमोली को आजीवन उपलब्धि के लिए ये पुरस्कार दिए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 के साथ ये पुरस्कार प्रदान करेंगी। पुरस्कार समारोह की तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। भारत से राहत सामग्री लेकर 5वां विमान आज नेपाल पहुंचा। इसमें 11 सदस्यीय बचाव दल, विशेष उपकरण और 5 टन से अधिक दवाएं हैं। नेपाल में भारत के राजदूत ने बताया कि भारत नेपाल में जारी राहत और बचाव कार्य में हर संभव सहायता कर रहा है। इस बीच नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 1100 से अधिक हो गई है। लगभग 4000 लोग अब भी लापता हैं। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 374 अंक गिरकर 76,570 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 141 अंक गिरकर 23,914 पर आ गया। किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने चीनी ताइपे के ची यू जेन और तन्वी ने डेनमार्क के अमाली शुल्ज को हराया। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो मिक्स डबल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर, FM गोल्ड पर।
1: ये जो दुनिया है ना, यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कांस्टेंट है। हर चीज बदलती रहती है। एक चीज, केवल एक चीज जो कांस्टेंट है वो है परिवर्तन, यानी खुद चेंज। इसलिए देखिए, समय भी आगे बढ़ता रहता है, हम भी एक से बढ़कर एक कार्यक्रम आपके लिए लेकर आते हैं, एक के बाद एक, यानी समय के अनुसार बदलती रहती है हमारी भी तस्वीर। तो ऐसा ही कुछ हुआ अभी दो दिन पहले। मैं यहीं स्टूडियोज में थी आपके साथ, और घर जब लौटी तो देखा कि घर में सभी लोगों के चेहरे उदास। मुझे लगा पता ना, मतलब क्या ही हो गया होगा, मुझे खबर नहीं हुई। फिर पता चला कि लियोनेल मेसी ने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की है, और इस वजह से उनके जो मुरीद हैं, केवल मेरे घर में ही नहीं, बाकी भी जो लोग हैं मेरे आसपास के, मेरे परिचित, या तो उनसे बातचीत में ये बात उभर कर आई, या फिर मैंने देखा कि उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे पोस्ट्स साझा किए हैं जिनसे उनके मन की जो उदासी है वो बाहर छलक रही है। अब इतना अधिक अगर किसी इंसान से आप प्रभावित हो जाते हैं तो उसमें न जाने क्या करिश्मा होगा, और इतने सारे लोग, तो इस तरह से अगर देखा जाए तो सच में मेसी का खेल, मैदान पर उनका व्यक्तित्व, मैदान के बाहर उनका व्यक्तित्व, हर चीज जो है वो हमें हमेशा याद रहेगी। इंटरनेशनल फुटबॉल से भले ही उन्होंने संन्यास लिया है, लेकिन उनकी जो जगह वो बना चुके हैं हमारे मन में, वो जगह कभी भी बदल नहीं सकती, वो जगह कांस्टेंट ही रहेगी। 6:12 और 55 सेकेंड्स फिलहाल स्टूडियो की घड़ी में समय। और हाँ, एक और आपको मैं बात दिलाना चाहूँगी याद, वो ये कि नेत्रदान पखवाड़ा चल रहा है, और इस मौके पर ये 8 तारीख 8 सितंबर तक ये विशेष सप्ताह मनाया जाएगा, सप्ताह नहीं, ये पखवाड़ा मनाया जाएगा। और इस विशेष मौके पर हमने बात की हमारे एक बेहद खास मेहमान के साथ, जिन्होंने आप सब के लिए एक संदेश भेजा है।
2: नमस्कार, मायसेल्फ निर्मल कुमार दत्त, ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर, रीजियोनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, ईस्टर्न रीजियन, आईपीजी मेयर कोलकाता। दिस ईयर वी आर सेलिब्रेटिंग 41st नेशनल आई डोनेशन फोर्टनाइट।

0: जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है लोगों में नेत्रदान के लिए जागरूकता बढ़ाना, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये नेत्रदान बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अगर किसी व्यक्ति का मृत्यु होता है तो हमें उसी परिवार को समझाना होगा और नेत्रदान के लिए राजी करना होगा। एज ए ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर मेरा ये मानना है, अगर हम 10 ऐसे परिवार को समझाएंगे तो उसमें से 7 से 8 लोग राजी हो जाएगा कॉर्निया डोनेशन के लिए। ऐसे करने से बहुत सारे लोगों को आंखों का रोशनी वापस ला सकते हैं हम। तो इस बात को हमें बहुत आगे ले जाना है। धन्यवाद।
1: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। FM

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स चाय और क्लासिक्स 100.1 एफएम गोल्ड पर चाय और क्लासिक्स 100.1 एफएम गोल्ड पर एफएम गोल्ड पर
2: अच्छा क्या आप जानते हैं कि 2 सितंबर को हर साल नारियल दिवस भी मनाया जाता है जानकारी के मुताबिक सबसे पहले 2009 में विश्व नारियल दिवस मनाया गया था और इस दिन को एशियाई और प्रशांत नारियल समुदाय द्वारा उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य दुनिया भर में नारियल की खेती के बारे में लोगों को जागरूक करना है। नारियल पानी केवल बॉडी को हाइड्रेटेड ही नहीं रखता बल्कि कई तरह की बीमारियों से बचाने में भी ये अहम भूमिका निभाता है। एक्चुअली जो बेनिफिट्स है ना नारियल पानी के बहुत सारे हैं। बहुत तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसमें जो थकान दूर करता है स्ट्रेस कम करता है और वजन घटाने के साथ साथ इम्यूनिटी बूस्ट करने और डायबिटीज को कंट्रोल करने में भी सहायक होता है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं एक ऐसी जगह जहां बहुत ही अधिक नारियल की पैदावार होती है दरिया किनारे चलते हैं चलिए

और देखते ही देखते हमारा ये जो समय है ये आज हमें यहीं पर समेटना होगा, क्योंकि कार्यक्रम जो है एकदम अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है और अधिक मैं यहाँ आपके साथ नहीं रह सकती। कोई बात नहीं, ऐसे चलते चलते आपको बता दूं कि बहुत सारे कार्यक्रम आगे आपके लिए एकदम तैयार हैं, आपका मनोरंजन करने, आपका ज्ञान बढ़ाने। 6:30 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम मार्केट मंत्र, जिसे हम दिल्ली से प्रसारित करते हैं। और अभी फिलहाल चयनिका को आप दे दें इजाजत। चलते चलते आप सबके लिए मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना जो कह रहा है आपको कि कहीं अब न जा, सुनते रहें।

0: This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor Prachi Priya.
1: नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है. श्रोताओं, अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से जुड़ी खबरों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक प्रकाश चावला. प्रकाश जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन.
2: नमस्कार.
1: सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर.
0: Benchmark domestic stock market indices declines for the third straight session. Sensex falls nearly 400 points. Nifty settles below 24,000 level. World Bank chief Ajay Banga praises India's economic growth, says it has potential to grow beyond 8% despite global economic headwinds, and global crude oil prices decline.
1: प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक लगातार तीसरे सत्र में गिरावट के साथ बंद हुए. सेंसेक्स 400 अंक गिरा, वहीं निफ्टी 24,000 के नीचे बंद हुआ. वर्ल्ड बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय बंगा ने भारत की आर्थिक विकास वृद्धि दर की प्रशंसा करते हुए कहा है कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद इसमें 8% से अधिक विकास करने की क्षमता है, और दुनिया भर में कच्चे तेल के दाम घटे.

0: And before we take on our main stories, here is an important disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: आइए श्रोताओं, अब जान लेते हैं शेयर बाजार की हलचल, यानी कि आज दिन के अंतराल में शेयर बाजार ने कैसा व्यवहार किया। प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक आज लगभग आधा प्रतिशत लुढ़के। इससे लगातार तीसरे दिन बाजार में गिरावट आई। सेंसेक्स 374 अंक फिसलकर 76,570 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 141 अंक लुढ़ककर 23,914 पर आ गया। विस्तृत शेयर बाजार में निफ्टी मिड कैप 100 और स्मॉल कैप 100 सूचकांक में लगभग आधे प्रतिशत गिरावट दर्ज की गई। इससे पहले वैश्विक बाजार से मिले नकारात्मक संकेतों के बीच बाजार गैप डाउन के साथ खुले। दोनों सूचकांक सीमित दायरे में कारोबार करते रहे और पूरे दिन दबाव में नजर आए। हालांकि क्लोजिंग ऑक्शन सेशन के बाद उन्होंने नुकसान की थोड़ी बहुत भरपाई भी की।
0: Benchmark domestic equity indices ended around 0.5% lower today, extending their losing streak to a third consecutive sessions. Sensex declined by 374 points to close at 76,570, while Nifty fell 141 points to settle at 23,914. In the broader market, Nifty mid-cap 100 index slipped 0.5%, while Nifty small-cap 100 index declined 0.4%. Elevated crude oil prices, rising global bond yields.

0: yields and future inflation concerns dented the Wall Street sentiment. Earlier, the markets opened with a gap down amid negative global cues. Both stock market indices traded within a narrow range and remained under pressure throughout the day. However, they paired some of the losses after the closing auction session.
1: Sensex में शामिल 30 में से 20 कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई. खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में एशियन

0: हुआ। इसके उलट अडानी पोर्ट्स में 1.5% से अधिक की बढ़त हुई। बजाज फाइनेंस, पावर ग्रिड और NTPC में 1% की तेजी आई और टाइटन 0.7% बढ़ा।
1: In the sectoral indices in the Bombay Stock Exchange, 18 out of the 28 sectors edged downward. Among the top underperformers, auto declined by 1.7%, IT declined 1.2%, and insurance as well as capital goods dipped 1.1%. In contrast, utilities rose 1.4%, housing finance as well as energy gained 0.7%, and power added 0.5%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was negative, as shares of 2,560 companies declined, 1,799 companies advanced, and 217 companies remain unchanged.
0: और अब जान लेते हैं रुपए का हाल। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा में बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 3 पैसे कमजोर होकर ₹94.98 पर बंद हुआ। प्रकाश, हम देख पा रहे हैं कि भू राजनीतिक तनाव जो है वो बढ़ रहा है इस बीच, और उसका जो एक पूर्ण संकेत है वो हम बाजारों पर हम देख पा रहे हैं। मगर अगर हम आज के संदर्भ में बात करें कि आज जो बाजार में गिरावट आई है, इस पक्ष के अलावा और क्या ऐसे पक्ष रहे और क्या ऐसे कारण रहे जिसने एक तरीके से पोषित किया इस गिरावट को?
2: देखिए, 3-4 कारण हैं जिसकी वजह से, एक्चुअली कुछ कारण ऐसे हैं जिसकी वजह से बाजार लगातार गिर रहा है, एक रेंज में घूमता हुआ नजर आ रहा है। और आज तो जो मेन कारण है वो यही है कि दोबारा से एक युद्ध जैसी स्थिति आ गई मिडल ईस्ट में, मतलब कि अटैक्स और काउंटर अटैक्स दोबारा से शुरू हुए। यू कैन सी इट हैपनिंग। उसका इम्पैक्ट कच्चे तेल पे पड़ रहा है, कच्चे तेल का प्राइसेस पूरे दुनिया में उथल पुथल मचा देता है जब कच्चे तेल का प्राइसेस बढ़ता है। और फिर आपका
0: जिसका सीधा इम्पैक्ट भी हम देख पाते हैं,
2: हाँ, जैस जो इम्पोर्टिंग मुल्क होते हैं उन पे तो बहुत ज्यादा
0: इम्पैक्ट।
2: और हम लोग इम्पोर्ट करते हैं एनर्जी का, पूरा क्रूड का 85% हमारी इम्पोर्ट डिपेंडेंस है। और फिर आपका एविएशन, अब जैसे मैं रिपोर्ट्स अभी पढ़ रहा था कि जो अभी वार दोबारा एस्केलेट हो गई है ईरान और US के बीच में, और उसका नतीजा ये कि फ्लाइट्स दोबारा डिसरप्ट होने लगी, जो फ्लाइट्स
0: यानी तेल से जुड़े जितने भी क्षेत्र हैं।
2: हाँ, तेल से, एक तो तेल इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, दूसरा सेफ्टी सिक्योरिटी का भी इशू है, जो आपका रूट्स हैं। तो ये सारा बहुत कोई अच्छी खबर नहीं है। इस अच्छी खबर के चलते बाजार गिरा, सुबह तो काफ़ी गिरा हुआ था, फिर थोड़ी रिकवरी आई फॉर सेवरल टेक्निकल रीजंस। बाजार ने शायद बिकॉज अभी तक बाजार जो था ना थोड़ा यूज्ड तो हो रहा था मिडल ईस्ट में, ये उम्मीद की जा रही थी कि भाई अब दोबारा से एस्केलेट नहीं होगा। लेकिन जो पिछले 2 दिन में और आज सुबह खासतौर पर जो हुआ वो फिर काफ़ी चिंता का एक कारण बना बाजार के लिए, एंड वो आपके सामने जो हुआ।
1: Prakash ji, also very strange phenomenon in the market today. DIIs and FIIs were the net buyers in the market. We also saw positive sales data for the month of August by the auto sector. Yet, both the auto index fell by 1.7%, and of course, Nifty and Sensex also declined. How did that happen? Because, you know, FIIs and DIIs are the major buyers in the market. They move the market. Yet, we saw a decline today.
2: Well, Arjun, it's all the game of sentiment. You know, sometimes technicals tell you something. The overall sentiment is so dampening. There's no confidence, right? So when there's no confidence, the momentum gets lost. And, you know, the market comprises of mainly of trading. The traders, they are the nerve center of the market. They are the matchmakers.
1: We talk about retail segments and day traders?
2: No. Day traders do not comprise only retail, the big guys, the big institutional investors. So, and across the continent after continent, you don't find any sentiment. Even futures now, US futures don't give us a kind of comforting situation. So, where do you go and hide, so to speak? So the technical data sometimes may point otherwise, but the real fact is the sentiment is disrupted.

0: and it doesn't really augur well for the market.
1: We saw the IT index also fall, correct, in fact, today. What is the future for the IT sector? Because it's all linked to not only the European, but the US market as well.
0: Well, IT, when it comes to Indian IT, it is somehow conversely related to the entire AI play.
1: Also, the US dollar to the rupee, the exchange rate is very important in terms of their revenue.
0: Well, it provides them some kind of a advantage because of the currency arbitrage. But that said, it cannot be the only your profit center. You can't play on only on currency arbitrage. You need to have a bottom line. And the bottom line, so far as the IT is concerned, there was some kind of reassurance again emerging, as if the AI play, in which we have not, or at least Indian IT firms have not been able to participate aggressively, or really not to the extent we would like it them to do it, but somehow AI play is not seem to be doesn't seem to be damaging so much as it was feared earlier. So let's see how it plays out in future.
2: प्रकाश, क्योंकि हम लोग क्षेत्र विशेष बात कर रहे हैं, तो ऐसे कोई चुनिंदा क्षेत्र आप बताना चाहें जो इस वक्त जो आम निवेशक हैं उनके लिहाज से निवेश करने के लिहाज से जो थोड़ा सा सेफ हो, इतनी जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं और अनसर्टेनिटीज हैं इस बीच भी?
0: आम निवेशक को बहुत सतर्क रहना चाहिए. उसको ऐसी कोई मजबूरी नहीं आज ही जाके.
2: सतर्क किस लिहाज से?
0: हाँ, सतर्क मतलब अब देखो क्या होता है, मेरे पास अगर 2 लाख रुपए पड़ा है या 4 लाख रुपए पड़ा है, मुझे कोई जल्दी नहीं कि जाके कल ही 4 लाख की खरीद कर लूँ. मैं स्टैगर तरीके से खरीदूँ, कभी 10,000 रुपए खरीदूँ, फिर उस शेयर्स की प्रोफाइल देखूँ. अगर मैं खुद करना चाह रहा हूँ, अगर म्यूचुअल फंड के रास्ते से मैं नहीं जा रहा, तो अगर मैं खुद करना चाह रहा हूँ और आम निवेशक हूँ और मेरे पास अगर 4 लाख रुपए पड़ा भी है, तो मुझे एकदम से नहीं जाना चाहिए. किसी ने बोल दिया, देख लिया, कुछ कर लिया, एंड आपको ये भी कई बार लालच आ जाता है कि यार मार्केट बहुत गिर गई है, हेयर इज एन अपॉर्चुनिटी. आपको बड़े एनालिस्ट भी ऐसे मिल जाते हैं कि आइए, बहुत बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी है. तो अब बाइंग अपॉर्चुनिटी तो पिछले 2 साल से हम लोग कह रहे हैं, तो लेकिन 2 साल से निफ्टी तो नहीं खिसका. तो यही सब देख, आपको जो हमारा रिटेल इन्वेस्टर है वो अब मैच्योर होने लगा है, वो भी हेडलाइन पढ़ता है, वो भी देख रहा है जियो पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी है. तो वो आम निवेशक अब देखिए ना, वो जा रहा है किस रास्ते से, सिप के रास्ते से जा रहा है, म्यूचुअल फंड के रास्ते से जा रहा है. दूसरी वजह जो हमारी मार्केट में ये भी है, जो अब लोगों को नज़र आने लगी है, कि मार्केट में लिक्विडिटी जो है मार्केट में, वो इम्पोर्टेंट अहम रोल प्ले करती है
2: जी.
0: और उस लिक्विडिटी को काफ़ी हद तक सोख लिया जा रहा है. किससे? हमारे IPO से. हमारे प्रमोटर्स रोज ब्लॉक डील्स हो रही हैं 7,000 करोड़ की. वो कौन बेच रहा है? हमारा प्रमोटर बेच रहा है. हमको ये लगता है कि FII छोड़ के भाग रहा है, लेकिन हमारा प्रमोटर जो है कहीं ना कहीं उसको भी लालच है, या ही वांट्स टू मेक द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, तो वो भी बेच के अपना वो कर रहा है. तो इन द
2: प्रोसेस FIIs तो आ ही रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज देखते
0: नहीं, FIIs तो मोस्टली जा रहे हैं, ट्रेंड लाइन तो यही बता
2: रही है. जब आते हैं तो अपॉर्चुनिटीज देख कर आते हैं.
0: हाँ, ये हमारा जो प्रमोटर है तबका है, जो प्राइवेट इक्विटी के रास्ते से आया और फिर IPO के रास्ते से 6 महीने बाद ही वांट्स टू सेल इट, तो उसके उससे भी आपको सावधान रहना है. भाई अगर प्रमोटर का स्टेक नीचे जा रहा है, अंग्रेजी में बोलता है स्किन इन द गेम, तो प्रमोटर का स्किन इन द गेम है कि नहीं आपको देखना है. सारी चीजों में आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा.
1: Well, let's move on to some more news now from the macroeconomic front. In an interview, World Bank President Ajay Banga said India has the potential to grow beyond its current 7 to 8% trajectory. Mr. Banga described the country's latest economic performance as robust despite global energy pressures, trade uncertainty and impact of El Nino. The World Bank chief said the latest growth figures reflected the strength of India's underlying economy. The World Bank president pointed to growth in services and exports along with sustained investment. He said India was doing substantial work on roads, bridges, airports, power, water and digitization. Meanwhile, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman met World Bank President Ajay Banga on the sidelines of the G20 Finance Ministers and Central Bank Governors meeting in Asheville, United States. The two leaders discussed further strengthening the India-World Bank Group partnership. The discussions also covered a sector-based, programmatic approach to credit enhancement for infrastructure. Additionally, Nirmala Sitharaman met Kristalina Georgieva, Managing Director of International Monetary Fund, IMF, in the same event. Both the leaders emphasized the importance of continued India-IMF engagement in strengthening analytical capabilities, supporting sound macroeconomic policies, and contributing to global economic resilience. Ms. Kristalina appreciated India's strong economic performance and track record, noting the strength built by the Indian economy. Prakashji, if you look at the underlying performance so far for the first quarter, our real GDP growth was at 7.8%. And if you compare it to a year ago, it was 6.9%. We're into the second quarter right now of the financial year. The nominal GDP, that is when you don't take into account inflationary pressures, has been more than 10% for India. Investments in that period have gone up by 12%, household consumption going up by 7%, and exports going up by 12%. But how do you see imports impacting inflation and our current account deficit to what Ajay Banga, the World Bank president, is saying? Because of what's happening globally and the uncertainty in the market when it comes to trade and commerce.
0: Well, it's nice to hear Mr. Banga, Ajay Banga, say that India's underlying economy, the underlying strength in the Indian economy is pretty good. Now, that's good enough. We know the macros are in place. But what really bothers us, we have to see these macros in the context of what's going around the world. The headwinds that are there, that are blowing in the Gulf. And those headwinds have to be negotiated, have to be navigated. The good thing is that thanks to RBI's intervention in terms of raising money through FC and RB, the rupee dollar equation has somehow stabilized. That's a very important macro. And suddenly when we had this stabilization coming and we have this Gulf situation escalating. So let's hope these GDP numbers are encouraging, and these numbers will come handy when it comes to dealing
1: with... But there are concerns about balance of payments, are there not?
0: Well, the balance, the current account deficit is could be a challenge. But it would not be the grave concern. I think it is still doable kind of a thing.
1: Well, let's move on to some more relevant news now. RBI today said its special US dollar Indian rupee foreign exchange swap facility has received foreign exchange inflows of over $136 billion till August 31st, 2026. Of the total inflows, foreign currency non-resident bank FCNRB deposits accounted for the overwhelming majority, amounting to $127.2 billion. Meanwhile, the overseas foreign currency borrowings, OFCBs, brought in $5.26 billion, and external commercial borrowings, ECBs, contributed $3.89 billion. RBI introduced a special US dollar Indian rupee foreign exchange swap facility covering FCNRB deposits, ECBs and OFCBs inflows on June 8, 2026. The swap facility announced to boost the inflow of dollars amid a weakening rupee was originally available until the end of September, but it was shortened by a month due to the encouraging response to the facility. The scheme has now been closed for FCNRB deposits, while the facility for ECBs and OFCBs remains available until December 31st, 2026. For the benefit of our listeners in Akashvani, Prakashji, can you tell us what is the nature of this security with the swap facility and the FCNRB deposits?
0: Well, Arjun, FCNRB anyways is a regular kind of a scheme. But what changed was through the swap, when we had seen this pressure earlier on rupee and in the forex market, the RBI and the government thought it fit to somehow give higher interest rate to the NRIs and then protect them from currency kind of changes or depreciation. Oh, that involves cost. So it was not really, the banks would not come forward to take the risk of currency depreciation. So the RBI took upon itself telling banks that you go ahead, raise the funds, whatever the currency costs are there, bank will, RBI will bear it. And more than expectations, what happened was there was a huge response from the NRIs. They thought, because who will give them 6% plus interest rates and their in the foreign currency, and it is their home market, home country. So there's a huge response, and this is how it worked. Let's hope that things will now, we'll see somehow stabilize in the forex market.
2: अन्य खबरों में श्रोताओं, जापानी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की सॉवरेन रेटिंग को BBB प्लस से बढ़ाकर A माइनस कर दिया है। एजेंसी ने इसके लिए देश की मजबूत आर्थिक वृद्धि, निजी खपत और सरकारी निवेश के साथ साथ वित्तीय प्रणाली की मजबूती में सुधार का हवाला दिया है। आज एक आधिकारिक बयान में JCRA ने कहा कि मजबूत निजी खपत और सरकारी निवेश के दम पर भारतीय अर्थव्यवस्था ने 7% से ज्यादा की तेज विकास दर बनाए रखी है। एजेंसी ने कहा कि सरकार ने उत्पादकता बढ़ाने और आर्थिक विकास में मदद करने वाली नीतियां लागू की है। प्रकाश जी, इसकी क्या महत्ता है भारत के लिए?
0: जैसे इट्स अ काइंड ऑफ एंडोर्समेंट हुई है हमारे मैक्रो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की। जैसे वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट अजय बांगा ने जी ने कहा, तो एक तरह के एंडोर्समेंट है कि हमारे मैक्रोज जो हैं, हमारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, वो इन प्लेस हैं, कोई वो हैं, तो इसलिए तो इम्प्रूवमेंट हुई हमारी सॉवरेन रेटिंग में। इससे अच्छा संकेत जाता है, खास तौर पे उस टाइम जब दिक्कतें आ रही हैं इधर से उधर से।
1: In more news, India's current account deficit widened to $4.2 billion, or 0.5% of GDP, in the first quarter of the current financial year. It was 0.4% of GDP in the same quarter a year ago. According to RBI preliminary data, the merchandise trade deficit rose by around $17 billion to over $86 billion during the same period. On the other hand, net services receipts increased by $3.5 billion to over $51 billion. Personal transfer receipts, mainly remittances from Indians working overseas, rose around $10 billion. On the investment front, FDI inflows improved to $6.1 billion. However, foreign portfolio investors have pulled out over $9.5 billion, compared with an inflow of over $1.5 billion in the same quarter last year. During the quarter, India's foreign exchange reserves depleted by $8.1 billion on the balance of payments basis. Your brief comments on this. We know that FDI investments have actually gone up. FPI have been withdrawing, which is why it has been affecting the Sensex Nifty to some extent, offset by the DIIs. But do tell us about our current account deficit because of what's happening to the Strait of Hormuz.
0: Well, Arjun, as per the data that you read out, 0.5% of GDP current account deficit, even after widening, it's not an alarming thing. It's manageable. Given the size of our economy, given the growth potential, growth that we are witnessing, and the potential of growth that is around, so this much any developing country, for any developing country with appetite for growth, this kind of a current account deficit is not a kind of a cause of concern.
2: आइए रुख करते हैं एशिया और यूरोप के बाजार की तरफ। आज एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 4% गिरा, जबकि जापान का निकेई 2.8% नीचे आया। आर्थिक मोर्चे पर डेटा और सांख्यिकी मंत्रालय के अनुसार दक्षिण कोरिया का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अगस्त में सालाना आधार पर 3% से अधिक बढ़ा, जो जुलाई में 2.8% था। वहीं कोर महंगाई, जिसमें खाने पीने की चीजों और ऊर्जा की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव को शामिल नहीं किया जाता, अगस्त में सालाना आधार पर लगभग 3.5% बढ़ी, जो जुलाई में 2.5% से अधिक थी। बात यूरोपीय बाजारों की करें तो यूरोपीय शेयर बाजारों में अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक जर्मनी का डैक्स आधे प्रतिशत से नीचे कारोबार कर रहा था और लंदन का फुटसी लगभग आधा प्रतिशत नीचे कारोबार करता नजर आया। प्रकाश जी, कॉस्पी 4% गिरा, दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, और निके में 2.8% की हमने देखी कि गिरावट दर्ज की गई है। अगर हम बात कॉस्पी की करें तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो CPI है उसमें भी जो है बहुत ही इम्प्रेसिव

0: ऐसा कुछ नहीं रहा है। तो किस तरीके से आप देखते हैं कि क्या ये वही जियोपॉलिटिकली जो चीज़ें हैं वो केवल वही इम्पैक्ट कर रही है?
1: कंटेजियस है ना ये, हर तरफ गिरावट ही गिरावट है, कहीं तो आपको हरा नहीं नजर आ रहा। आप पूरा भूगोल देख लीजिए, हर तरफ लाल ही लाल नजर आएगा।
0: अपनी तरफ भी इनकी अपनी तरफ भी महंगाई।
1: तो हम लोग तो मिडल में रहते हैं, आप सुबह एशिया देखिए, फिर आप हमारे हम भी एशिया में आते हैं, एशियन मार्केट, उसके बाद यूरोप चले जाइए, फिर आप अमेरिका चले जाइए, हर जगह लाल ही लाल नजर आएगा। तो आज तो लाल ही छाया हुआ है, उसके रीजंस हैं। मैं अर्जुन जी से पहले बात कर रहा था कि जो स्क्रिप्ट है, जब से ये वार चली है स्क्रिप्ट चेंज नहीं हो रही है, एक तरह के फंसा हुआ है पूरा मार्केट। और कुछ हालांकि कुछ मार्केट से कोरिया वॉज डूइंग वेल अ फ्यू मंथ्स अगो, अ फ्यू वीक्स अगो, थैंक्स टू एआई प्ले। तो लेकिन अभी तो सिचुएशन कुछ खराब ही है ना,
0: तो 8% तक की बढ़त देखी है।
1: हाँ, तो उनके लिए तो गिरावट है कोई, लेकिन आज जो गिरावट है कोई अचंभा थोड़ी है, कोई बड़े की एक्सपर्ट्स की जरूरत भी नहीं है कि बोलने के लिए, तो इट्स सो ऑब्वियस।
0: नहीं, शायद सीबीआई का जो डेटा आया है वो
1: उन्हें सीबीआई डेटा क्या बता रहा है कोरिया में क्या, वो मैंने जैसे मैं अर्जुन जी से बता रहा था कि सेंटिमेंट जो होती है ना वो मैटर करती है, जो भाव है ना खबरों का, भाव इतना ओवरवेलमिंग है,
0: प्रवाह है
1: भाव है, उसने आपको सब स्वे अवे कर दिया सब कुछ।
2: Moving on to the US stock market, Wall Street major stock market indices declined for the third consecutive session yesterday. Nasdaq composite fell 1%, while Dow Jones industrial average slipped 0.8% and the S&P 500 lost 0.7%. Markets remain under pressure as investors weighed the possibility that the Fed Reserve could tighten monetary policy later this month. Very briefly, there are two rates here. There's a discount rate and the Fed funds rate. What kind of tightening are we going to look at? Discount rate 3.75%. Are we going to see any changes there? Or the Fed funds rate, which is effectively 3.63%?
1: Well, the bond yields are shooting. It's a matter of concern. And the Treasury Secretary and the Fed both are giving indications that they need to do something. So, and it remains to be seen what do they have in their arsenal to fight the situation. And it's for obvious reasons why bond yields are going, because of the war, because of the high interest rates, because of the inflation specter. And what do we do? So, it's a bad situation for the U.S. economy, and because you are sitting on a debt of $40 trillion. And then where is the scope? They are trying to do some financial engineering, so to speak, but I don't know whether it will pay off.
0: आगे बढ़ते हैं। भारत और अमेरिका महत्वपूर्ण खनिजों के विषय में और अधिक जुटकर काम करने के लिए सहमत हो गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और अमेरिका के वित्त मंत्री स्टॉक बेसेंट के बीच हुई बैठक के बाद इस पर सहमति बनी। कल G20 सम्मेलन में वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक के दौरान दोनों नेताओं की मुलाकात हुई।
2: Moving on to the group, global crude oil market. Global crude oil prices fell today. Brent crude was trading 1% down at $93.73 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was also trading 1% lower at $89.24 per barrel when reports last came in. How concerned are we about what's happening when it comes to crude oil prices spiking?
1: That's the most important concern. It's the gravest concern for us and for the rest of the world. And I think some reports suggested that we have increased our strategic oil reserves, and countries are going for that. And let's see how it plays out. I think it's a challenge again. We thought ki things are easing. But now it has again resurfaced. It's a matter of concern, sure enough.
0: सराफा बाजार में सोना 1.3% की गिरावट के साथ 151,184 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था और चांदी 0.9% लुढ़ककर 2,28,396 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। प्रकाश जी, कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने के लिए, मेरे और अर्जुन के सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया।
2: And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic stock market indices declined for the third straight session. Sensex falls nearly 400 points. Nifty settles below 24,000 level. World Bank Chief Ajay Banga praises India's economic growth, says it has potential to grow beyond 8% despite global

0: Global economic headwinds and global crude oil prices decline. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye.
1: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों की महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया गया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा दायित्व को बढ़ावा देना और विचार विमर्श से सुशासन और सेवा वितरण में सुधार लाना है। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया गया है। ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के बाद इसकी घोषणा की गई। सीईओ ट्रस्ट के प्रशासनिक कार्यों की देखरेख और राम मंदिर परिसर से संबंधित मुख्य परिचालन जिम्मेदारियों को संभालेंगे। ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन ने 3 नए सदस्यों की नियुक्ति की जानकारी दी है। इनमें अयोध्या के वरिष्ठ अधिवक्ता मदन मोहन पांडे, दिल्ली के महेश भगचंद का और शिकोहाबाद की सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य निर्मला यादव शामिल हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा, रणनीतिक स्वायत्तता और आर्थिक अनुकूलन से अलग नहीं किया जा सकता। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में डॉ. सिंह ने आत्मनिर्भर, स्वदेशी, किफायती और प्रौद्योगिकी आधारित ऊर्जा क्षेत्र के विकास का आह्वान किया। उन्होंने वर्तमान समय को स्वच्छ ऊर्जा सहित एक सुरक्षित और टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की ओर आ रहे बदलाव का समय बताया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज नई दिल्ली में नागर विमानन क्षेत्र में व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के उपायों की समीक्षा की। श्री नायडू ने अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को आसान, पारदर्शी, स्वचालित और समयबद्ध बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री नायडू ने संबंधित अधिकारियों को इस प्रक्रिया को सरल और स्वचालित बनाने तथा 15 दिनों के भीतर उनके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के महासागर दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में सेशल्स एक महत्वपूर्ण साझेदार है। नई दिल्ली में सेशल्स संसद के अध्यक्ष अजारेल अर्नेस्टा के साथ बातचीत में श्री बिरला ने कहा कि भारत और सेशल्स विकासशील देशों की आवाज को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत से राहत सामग्री लेकर 5वां विमान दल आज नेपाल पहुंचा। इसमें 11 सदस्यीय बचाव दल, विशेष उपकरण और 5 टन से अधिक दवाएं हैं। नेपाल में भारत के राजदूत ने बताया कि भारत नेपाल में जारी राहत और बचाव कार्य में हर संभव सहायता कर रहा है। इस बीच नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 1100 से अधिक हो गई है। लगभग 4000 लोग अब भी लापता हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में अधिकारियों के तबादले और तैनाती में कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी सरकार की आलोचना की है। नई दिल्ली में आज पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि इन दिनों वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले और तैनाती रेट कार्ड के आधार पर किए जा रहे हैं।
1: मुख्यमंत्री भगवंत मान को पंजाब की जनता को उत्तर देना पड़ेगा। आपके इशारों पर जब ये कैश फॉर ट्रांसफर घोटाला हो रहा है तो इसका किंग पिन अरविंद केजरीवाल है या नहीं, बताइए।
0: सरकार ने वर्ष 2024 के लिए तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कारों की घोषणा की है। बलजीत कौर और स्काल्जेंग रिगजिन को भू साहसिक अभियानों, रिमो साह को जल साहसिक अभियान और शिव प्रसाद चमोली को आजीवन उपलब्धि के लिए ये पुरस्कार दिए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 के साथ ये पुरस्कार प्रदान करेंगी। पुरस्कार समारोह की तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने चीनी ताइपे के ची यू जेन को और तन्वी ने डेनमार्क की अमाली शुल्ज को हराया। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो मिक्स डबल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। मुंबई शेयर बाजार में आज लगातार तीसरे दिन गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 374 अंक फिसलकर 76,570 पर बंद हुआ। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi participated in the valedictory session of the departmental summit of the Minister of Jal Shakti in New Delhi today. The two-day departmental summit was the first in a series of departmental summits envisioned by the Prime Minister to strengthen the spirit of Team India, deepen cooperative federalism, and foster collective ownership of national priorities through closer collaboration between the centre and the states. The initiative provided a structured platform to jointly deliberate on critical sectoral priorities and accelerate implementation and outcomes. In Uttar Pradesh, former commander of the Western Air Command, retired Air Marshal Jitendra Mishra, is appointed as the first CEO of the Sri Ram Janmabhoomi Kshetra Trust in Ayodhya today. The appointment was announced after the meeting of a trust held at Maniram Das Chhawani in Ayodhya under the chairmanship of Trust President Mahant Nritya Gopal Das. The CEO will be responsible for overseeing the administrative functioning of the trust and handling key operational responsibilities related to the Sri Ram Temple Complex. Trust Interim General Secretary Krishna Mohan informed about the appointment of three new members, which include Madan Mohan Pandey, a senior advocate from Ayodhya, Mahesh Bhagchandka of Delhi, and retired principal Dr. Nirmala Yadav from Shukohabad. India continues to extend all possible assistance to Nepal in the ongoing rescue and relief efforts. The 15 Indian aircraft carrying relief and rescue assistance has reached Nepal. In a social media post, External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar said the aircraft carried 11-member rescue team with specialized equipment along with 5.5 tons of essential medicines. A 19-member Indian forensic team has begun analyzing DNA samples alongside forensic experts to assist in identifying people affected by the recent flash floods in Nepal. Meanwhile, the death toll from devastating flash floods in Nepal has risen to 1,127, with nearly 4,900 still missing as rescuers battle rain and debris. Nepal Prime Minister Balendra Shah told Parliament today that the devastation caused by the flash floods stands as a stark warning of escalating climate risks in the Himalayan region and called on the international community to share responsibility for mitigating its impacts. Mr. Shah also noted that Nepal has already received messages of goodwill and material assistance from multiple countries and multilateral partners. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman met Managing Director of the International Monetary Fund, Kristalina Georgieva, and the World Bank President Ajay Banga on the sidelines of the G20 Finance Ministers and Central Bank Governors meeting in Asheville, United States. She discussed the global economic outlook and India's evolving growth trajectory with Ms. Georgieva. With Mr. Banga, the finance minister discussed further strengthening the India-World Bank Group partnership. The discussions also covered a sector-based programmatic approach to credit enhancement for infrastructure. Ms. Sitharaman also met the European Commissioner for Economy, Valdis Dombrovskis. Japanese credit rating agency JCRA has upgraded India's sovereign rating to a negative from BBB positive, citing the country's solid economic growth, robust private consumption and public investment, along with improvements in the soundness of its financial system. In an official statement, JCRA said the Indian economy has maintained a high growth rate of more than 7%, supported by strong private consumption and public investment. The Supreme Court today said it will take up the reconstitution of the Bar Council of India after the newly elected state bar councils complete the statutory process for constituting the BCI. The Apex Court was hearing pleas challenging the continued occupation of the BCI chairperson's post by senior advocate Manan Kumar Mishra and the purported extension of his tenure till 2030. The Bombay High Court today ordered a CBI probe into the death of Disha Salian, former manager of late actor Sushant Singh Rajput, and pulled up the Mumbai police for failing to register an FIR for 6 years. A division bench of Justices Sarang Kotwal and Ranjit Sinha Rajiv Bhosle said that an investigation

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत का पांचवां विमान राहत और बचाव सहायता के लिए नेपाल पहुंचा। मृतकों की संख्या बढ़कर 1100 से अधिक हुई। लगभग 5000 लोग अब भी लापता। रिजर्व बैंक ने कहा, अमरीकी डॉलर भारतीय रुपया विदेशी मुद्रा विनिमय सुविधा से 31 अगस्त तक 136 अरब डॉलर का प्रवाह हुआ। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र न्यास का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और आवाजाही पर प्रमुख रूप से चर्चा होगी। पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। और श्रीलंका के हटने के बाद भारत 2027 में पहली बार महिला चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट की मेजबानी करेगा। भारत का पांचवां विमान राहत और बचाव सहायता लेकर आज नेपाल पहुंच गया। विमान में विशेष सुरंग बचाव उपकरणों से सुसज्जित 11 सदस्यीय बचाव दल और 5.5 टन आवश्यक दवाएं हैं। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1127 हो गई है, जबकि लगभग 4900 लोग अब भी लापता हैं। बचावकर्मी मूसलाधार वर्षा और मलबे से जूझ रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने आज संसद में बताया कि इस बाढ़ से हुई तबाही हिमालय क्षेत्र में बढ़ते जलवायु खतरों की एक गंभीर चेतावनी है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इसके प्रभावों को कम करने की जिम्मेदारी साझा करने का आह्वान किया। श्री शाह ने बताया कि नेपाल को भारत, चीन, अमेरिका, जापान, एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र सहित कई स्रोतों और बहुपक्षीय साझेदारों से सहायता प्राप्त हुई है। श्री शाह ने विनाशकारी बाढ़ के प्रति भारत की त्वरित प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद व्यक्त किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि उसकी विशेष अमरीकी डॉलर भारतीय रुपया विदेशी मुद्रा विनिमय सुविधा में इस वर्ष 31 अगस्त तक 136 अरब डॉलर से अधिक का विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है। रिजर्व बैंक ने 8 जून 2026 को FCNRB जमा, ECB और OFCB के निवेश को सम्मिलित करने वाली विशेष विदेशी मुद्रा स्वैप सुविधा शुरू की थी। रुपए की कमजोरी के बीच डॉलर के प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए घोषित ये सुविधा मूल रूप से सितंबर के अंत तक उपलब्ध थी, लेकिन इसे सकारात्मक प्रतिक्रिया के कारण एक महीने के लिए कम कर दिया गया। अब FCNRB जमा के लिए ये योजना बंद कर दी गई है, जबकि ECB और OFCB के लिए ये सुविधा 31 दिसंबर 2026 तक उपलब्ध रहेगी। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बांगा ने कहा है कि भारत में 7-8% की मौजूदा वृद्धि दर से आगे बढ़ने की क्षमता है। श्री बांगा ने वैश्विक ऊर्जा दबाव, व्यापार अनिश्चितता और अलनीनो के प्रभाव के बावजूद देश के मौजूदा आर्थिक प्रदर्शन को मजबूत बताया। अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में श्री बांगा ने कहा कि नए आंकड़े भारत की अर्थव्यवस्था की बुनियादी स्थिति की मजबूती दर्शाते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सकल घरेलू उत्पाद GDP आंकड़ों पर सवाल उठाने वालों की कड़ी आलोचना की है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% की GDP वृद्धि ऐतिहासिक रिकॉर्ड है।
1: जब आप सच्चाई को तोड़ मोड़ करके लोगों का हौसला तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो आप विश्वासघात कर रहे हैं जनता के साथ। आखिर ये जो 7.8% का पाथ ब्रेकिंग रिकॉर्ड ग्रोथ दुनिया में और कोई देश नहीं दिखा पा रहा है, ऐसा तेजी से आर्थिक प्रगति ये कोई सरकार नहीं कर रही है, ये कोई व्यक्ति विशेष नहीं, ये देश के 140 करोड़ भारतवासियों का सामर्थ्य है।
0: बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज रात 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। श्री वेवर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और आवाजाही पर प्रमुख रूप से चर्चा होगी। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर श्री वेवर भारतीय उद्योग परिसंघ के एक कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। एक रिपोर्ट।
2: यह किसी बेल्जियम प्रधानमंत्री की पिछले दो दशकों में पहली भारत यात्रा है जो भारत बेल्जियम संबंधों में एक महत्वपूर्ण नए चरण की शुरुआत का संकेत देती है। बेल्जियम यूरोप में भारत का एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $13 अरब से अधिक रहा। एंटवर्प के प्रमुख वैश्विक हीरा केंद्र होने के कारण हीरा व्यापार दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री 4 सितंबर को मुंबई का दौरा भी करेंगे जो दोनों देशों के बीच साझेदारी की मजबूत आर्थिक नींव को रेखांकित करता है। उनके भारत डायमंड बोर्स के प्रस्तावित दौरे से द्विपक्षीय संबंधों में हीरा व्यापार के महत्व और इस क्षेत्र में आगे सहयोग की संभावनाओं को बल मिलेगा। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: Every great journey begins with people coming together.

0: together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र न्यास का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के बाद आज इसकी घोषणा की गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 3 नए सदस्यों के नामों की भी घोषणा की, जिनमें अयोध्या के वरिष्ठ वकील मदन मोहन पांडे, दिल्ली के महेश भागचंद का और शिकोहाबाद की रिटायर्ड प्रिंसिपल डॉक्टर निर्मला यादव शामिल हैं। ट्रस्ट के अंतरिम जनरल सेक्रेटरी कृष्ण मोहन ने बताया कि ट्रस्ट के नए सीईओ एयर मार्शल सेवानिवृत्त जितेंद्र मिश्रा ने ऑपरेशन सिंदूर में भी अहम भूमिका निभाई थी। वे 30 अप्रैल 2026 को रिटायर हुए। उन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। श्री राम मंदिर में दान की चोरी के आरोपों के बाद सीईओ के चयन के लिए 6 जुलाई को 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई थी। सीईओ के पद के लिए 5,500 से ज्यादा आवेदन मिले थे। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल हुए। 2 दिन का यह सम्मेलन प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप विभागीय शिखर सम्मेलनों की श्रृंखला का पहला सम्मेलन था। इसका उद्देश्य देश की टीम भावना को मजबूत करना, सहकारी संघवाद को प्रगाढ़ बनाना और केंद्र तथा राज्यों के बीच घनिष्ठ सहयोग के माध्यम से राष्ट्रीय प्राथमिकताओं की सामूहिक स्वामित्व को बढ़ावा देना है। इस पहल ने महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर संयुक्त रूप से विचार विमर्श करने और कार्यान्वयन तथा परिणामों में तेजी लाने के लिए मंच प्रदान किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा, रणनीतिक स्वायत्तता और आर्थिक अनुकूलन से अलग नहीं किया जा सकता। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में डॉक्टर सिंह ने आत्मनिर्भर, स्वदेशी, किफायती और प्रौद्योगिकी आधारित ऊर्जा क्षेत्र के विकास का आह्वान किया। उन्होंने वर्तमान समय को स्वच्छ ऊर्जा सहित एक सुरक्षित और टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की ओर आ रहे बदलाव का समय बताया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज नई दिल्ली में नागर विमानन क्षेत्र में व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के उपायों की समीक्षा की। श्री नायडू ने अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया आसान, पारदर्शी, स्वचालित और समयबद्ध बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री नायडू ने संबंधित अधिकारियों की इस प्रक्रिया को सरल और स्वचालित बनाने तथा 15 दिन के भीतर उनके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में अधिकारियों के तबादले और तैनाती में कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी सरकार की आलोचना की है। नई दिल्ली में आज पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि इन दिनों वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले और तैनाती रेड कार्ड के आधार पर की जा रही है।
3: मुख्यमंत्री भगवंत मान को पंजाब की जनता को उत्तर देना पड़ेगा। आपके इशारों पर जब ये कैश फॉर ट्रांसफर घोटाला हो रहा है तो इसका किंग पिन अरविंद केजरीवाल है या नहीं, बताइए।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कल तेज वर्षा होगी। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अगले 2 दिनों में तेज वर्षा की आशंका है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंतरिक कर्नाटक में कल गरज चमक और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान है। बिहार के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बिगड़ रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि गंगा नदी के जल स्तर में वृद्धि हुई है।
4: बिहार में गंगा नदी का पानी भागलपुर, खगड़िया, समस्तीपुर, पटना, बक्सर, भोजपुर और वैशाली समेत कई जिलों में निचले इलाकों में फैल गया है। भागलपुर जिला बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित

0: थे। उप मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि जिले में बाढ़ की स्थिति खतरनाक होने के बावजूद नियंत्रण में है। पटना के भद्रघाट, नौजर घाट और महावीर घाट पर गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर सड़कों पर बैरिकेडिंग कर आवागमन रोक दिया है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: झारखंड में H1N1 स्वाइन फ्लू संक्रमण के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। पिछले 30 दिन में राज्य भर में कुल 36 रोगी मिले हैं, इनमें 18 बच्चे और किशोर शामिल हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: झारखंड में स्वाइन फ्लू यानी H1N1 संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी प्रमुख अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रहने और संदिग्ध मरीजों की तत्काल जांच और उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रांची के रिम्स और जमशेदपुर के MGM अस्पताल में H1N1 और H3N2 की जाँच की आधुनिक व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। रिम्स के क्रिटिकल केयर विभागीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप भट्टाचार्य ने बच्चों, बुजुर्गों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। महेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: बम्बई उच्च न्यायालय ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को सौंपने का आदेश दिया है। न्यायालय ने 6 वर्ष तक प्राथमिकी दर्ज न करने के लिए मुंबई पुलिस को फटकार लगाई है। न्यायालय की पीठ ने आज कहा कि उचित और ठोस जाँच के लिए मामला CBI को सौंपना आवश्यक है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने अनिवार्य सुरक्षा उपायों के बिना विस्फोटक पदार्थों की ऑनलाइन बिक्री के लिए एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण के अनुसार प्लेटफॉर्म पर लाइसेंस सत्यापन, खरीदार पात्रता जांच और अनिवार्य सुरक्षा संबंधी जानकारी के बिना अमोनियम नाइट्रेट की ऑनलाइन लिस्टिंग सुविधा दी जा रही थी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 374 अंक फिसलकर 76,570 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 141 अंक फिसलकर 23,914 पर आ गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 3 पैसे कमजोर होकर 1 अमरीकी डॉलर के मुकाबले 94.98 रुपए पर बंद हुआ।
1: सरकार ने वर्ष 2024 के लिए तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। बलजीत कौर और स्काल जेंग रिगजिंग को भू साहसिक अभियानों, रेमो साहा को जल साहसिक अभियान और शिव प्रसाद चमोली को आजीवन उपलब्धि के लिए पुरस्कार दिए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 के साथ ही पुरस्कार प्रदान करेंगे। पुरस्कार समारोह की तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 2027 में होने वाली पहली महिला क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी श्रीलंका से हटाकर भारत में आयोजित करने का फैसला किया है। 6 टीम का ये टूर्नामेंट अगले वर्ष 14 से 28 फरवरी तक T20 प्रारूप में मुंबई और वडोदरा में खेला जाएगा। किदंबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने चीनी ताइपे की ची यू जेन को और तन्वी ने डेनमार्क की अमाली शुल्ज को हराया। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो मिक्स डबल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत का 5वां विमान राहत और बचाव सहायता के लिए नेपाल पहुंचा। मृतकों की संख्या बढ़कर 1200 से अधिक हुई। लगभग 4000 से अधिक लोग अब भी लापता। रिजर्व बैंक ने कहा अमरीकी डॉलर भारतीय रुपया विदेशी मुद्रा विनिमय सुविधा से 31 अगस्त तक $136 अरब का प्रवाह हुआ। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र न्यास का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। और श्रीलंका के हटने के बाद भारत 2027 में पहली बार महिला चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। New Delhi sends 5th tranche of emergency material to flood-hit Nepal. Death toll rises to over 1,200, with over 4,000 people still missing. RBI says special US dollar Indian rupee forex swap facility generated over $136 billion US dollar inflows.

0: नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,200 से अधिक हो गई है, जबकि 4,000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। बचाव कर्मी मूसलाधार बारिश और मलबे से जूझ रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालन शाह ने आज संसद में कहा कि इस बाढ़ से हुई तबाही हिमालय क्षेत्र में बढ़ते जलवायु जोखिम की एक गंभीर चेतावनी है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इसके प्रभाव को कम करने की जिम्मेवारी साझा करने का आह्वान किया। श्री शाह ने बताया कि नेपाल को भारत, चीन, अमेरिका, जापान, एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र सहित कई स्रोतों और बहुपक्षीय साझेदारों से सहायता प्राप्त हुई है। रिजर्व बैंक ने बताया है कि उसकी विशेष अमरीकी डॉलर भारतीय रुपया विदेशी मुद्रा विनिमय सुविधा में इस वर्ष 31 अगस्त तक 136 अरब डॉलर से अधिक का विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है। रिजर्व बैंक ने 8 जून 2026 को FCNRB जमा ECB और OFCB के निवेश को सम्मिलित करने वाली विशेष विदेशी मुद्रा स्वैप सुविधा शुरू की। रुपये की कमजोरी के बीच डॉलर के प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए घोषित यह सुविधा मूल रूप से सितंबर के अंत तक उपलब्ध थी, लेकिन इसे सकारात्मक प्रतिक्रिया के कारण एक महीने के लिए कम कर दिया गया। अब FCNRB जमा के लिए यह योजना बंद कर दी गई है, जबकि ECB और OFCB के लिए सुविधा 31 दिसंबर 2026 तक उपलब्ध रहेगी। बेल्जियम के प्रधानमंत्री वार्डी वेवर 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। श्री वेवर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र न्यास का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। न्यास के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के बाद आज इसकी घोषणा की गई। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 3 नए सदस्यों के नाम की भी घोषणा की, जिनमें अयोध्या के वरिष्ठ वकील मदन मोहन पांडे, दिल्ली के महेश भागचंदका और शिकोहाबाद के रिटायर्ड प्रिंसिपल डॉ. निर्मला यादव शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 2027 में होने वाली पहली महिला क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी श्रीलंका से हटाकर भारत में आयोजित करने का फैसला किया है। 6 टीम का ये टूर्नामेंट अगले वर्ष 14 से 28 फरवरी तक T20 प्रारूप में मुंबई और बड़ोदरा में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. India has stepped up its relief operation in flood-hit Nepal, with New Delhi delivering a fifth tranche of emergency material. India's ambassador to Nepal in a social media post shared that the fifth Indian aircraft carrying relief and rescue assistance arrived in the Himalayan nation this afternoon. The aircraft carried an 11-member rescue team equipped with specialized tunnel rescue equipment along with 5.5 tons of essential medicines. The flash floods triggered by the collapse or avalanche of ice and rocks near the Nepal-Tibet border devastated towns and villages in northern and central Nepal on the 26th of last month. The Indian Air Force has carried out several sorties to transport essential supplies to the affected areas. India has also offered specialized search and rescue support. Indian teams have been involved in operations around hydropower tunnels and in forensic efforts to identify victims amid the high number of casualties and missing people. Meanwhile, Nepal Prime Minister Balendra Shah, while speaking in Parliament today, thanked India for its quick response to the devastating flash floods, as rescue teams continue searching for survivors and missing people in some of the worst affected areas. Death toll from the devastating flash floods in the Himalayan nation has risen to 1,200, with over 4,000 people still missing as rescuers battled rain and debris. Addressing the House of Representatives, Mr. Shah acknowledged the emergency assistance provided by India and China, including relief supplies, technical support, and rescue personnel. The Prime Minister said the devastation caused by the flash

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसंख्या वृद्धि और भविष्य में पानी की जरूरतों सहित शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों के प्रति शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया। उन्होंने जल शक्ति मंत्रालय की ओर से आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय विभागीय जल सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए शहरी स्थानीय निकायों को भी इसी प्रकार के चिंतन शिविर आयोजित करने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने अधिक से अधिक जल बचत तकनीक अपनाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने दो दिवसीय गहन विचार विमर्श की सराहना की। उन्होंने सुझाव दिया कि ये सम्मेलन एक बार की कवायद नहीं रह जानी चाहिए, बल्कि निरंतर समीक्षा और आगे की कार्रवाई होनी चाहिए। श्री मोदी ने जन भागीदारी पर जोर देते हुए लोगों में व्यापक जागरूकता उत्पन्न करने के लिए जल उत्सव आयोजन को बढ़ावा देने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने बांध सुरक्षा के लिए प्रत्येक मानसून से पहले ठोस तैयारी, निर्धारित सावधानियों का पालन और शैक्षिक पाठ्यक्रमों में उपयुक्त रूप से शामिल कर स्कूली छात्रों के बीच जागरूकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में जल प्रबंधन तथा इसके प्रशासन से संबंधित ज्ञान और क्षमता मजबूत बनाने का आह्वान किया। भारत का पांचवां विमान कल राहत और बचाव सहायता लेकर नेपाल पहुंचा। विमान में विशेष सुरंग बचाव उपकरणों से सुसज्जित 11 सदस्यीय बचाव दल और 5.5 टन आवश्यक दवाएं हैं। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1200 से अधिक हो गई है, जबकि 4000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। बचाव कर्मी मूसलाधार बारिश और मलबे से जूझ रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालन शाह ने कल संसद में कहा कि इस बाढ़ से हुई तबाही हिमालय क्षेत्र में बढ़ते जलवायु जोखिम की एक गंभीर चेतावनी है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इसके प्रभावों को कम करने की जिम्मेदारी साझा करने का आह्वान किया। श्री शाह ने बताया कि नेपाल को भारत, चीन, अमेरिका, जापान, एशिया विकास बैंक, विश्व बैंक, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र सहित कई स्रोतों और बहुपक्षीय साझेदारों से सहायता प्राप्त हुई है। रिजर्व बैंक ने बताया है कि उसकी विशेष अमेरिकी डॉलर भारतीय रुपया विदेशी मुद्रा विनिमय सुविधा में इस वर्ष 31 अगस्त तक 136 अरब डॉलर से अधिक का विदेशी मुद्रा प्राप्त हुआ है। रिजर्व बैंक ने 8 जून

0: 2026 को FCNRB जमा ECB और OFCB के निवेश को सम्मिलित करने वाली विशेष विदेशी मुद्रा स्वैप सुविधा शुरू की। रुपये की कमजोरी के बीच डॉलर के प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए घोषित यह सुविधा मूल रूप से सितंबर के अंत तक उपलब्ध थी, लेकिन इसे सकारात्मक प्रतिक्रिया के कारण एक महीने के लिए कम कर दिया गया। अब FCNRB में जमा के लिए ये योजना बंद कर दी गई है, जबकि ECB और OFCB के लिए ये सुविधा 31 दिसंबर 2026 तक उपलब्ध रहेगी। बेल्जियम के प्रधानमंत्री वॉर्डी वेवर 3 दिनों की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचने वाले हैं। उनके साथ बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रांकेन भी आ रहे हैं। पिछले वर्ष फरवरी में पदभार संभालने के बाद प्रधानमंत्री डी वेवर की यह भारत की पहली यात्रा है। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, जिसमें क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों सहित द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी। पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र न्यास का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। न्यास के अध्यक्ष महंत नित गोपाल दास की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के बाद कल इसकी घोषणा की गई। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल की तराई क्षेत्र, सिक्किम, विदर्भ और दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी तेज वर्षा होगी। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंतरिक कर्नाटक में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 2027 में होने वाली पहली महिला क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी श्रीलंका से हटाकर भारत में आयोजित करने का फैसला किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। India has stepped up its relief operation in flood-hit Nepal, with New Delhi delivering a fifth tranche of emergency material. India's ambassador to Nepal in a social media post shared that the fifth Indian aircraft carrying relief and rescue assistance arrived in the Himalayan nation yesterday. The aircraft carried an 11-member rescue team equipped with specialized tunnel rescue equipment along with 5.5 tons of essential medicines. The flash floods triggered by the collapse or avalanche of ice and rocks near the Nepal-Tibet border devastated towns and villages in northern and central Nepal on the 26th of August. The Indian Air Force has carried out several sorties to transport essential supplies to the affected areas. India has also offered specialized search and rescue support. Indian teams have been involved in operations around hydropower tunnels and in forensic efforts to identify victims amid the high number of casualties and missing people. Meanwhile, Nepal Prime Minister Balinder Shah, while speaking in Parliament yesterday, thanked India for its quick response to the devastating flash floods as rescue teams continue searching for survivors and missing people in some of the worst affected areas. The death toll from the devastating flash floods in the Himalayan nation has risen to 1,200, with over 4,000 people still missing as rescuers battled rain and debris. Addressing the House of Representatives, Mr. Shah acknowledged the emergency assistance provided by India and China, including relief supplies, technical support and rescue personnel. The Prime Minister said the devastation caused by the flash floods stands as a stark warning of escalating climate risks in the Himalayan nation and called on the international community to share responsibility for mitigating its impacts. Prime Minister Narendra Modi has called for sensitizing urban local bodies to the challenges arising from urbanization, including population growth and future water requirements, and suggested organizing similar Chintan Shivirs for urban local bodies. Mr. Modi yesterday chaired the valedictory session of the two-day National Departmental Summit on Water, organized by the Ministry of Jal Shakti. He called for greater adoption of water-saving technologies. He also suggested dedicated exhibitions and workshops, including exposure to global best practices, to enable Indian manufacturers and stakeholders to develop and scale efficient solutions. The Prime Minister appreciated the intensive two-day deliberations and emphasized that the actionable and time-bound action points emerging from the summit should be pursued through